0: वातावरण मनुष्य के विचारों का दर्पण है। जिस तरह एक एक बिंदु से तालाब भरता है, उसी तरह एक एक विचार से मनुष्य जीवन का भविष्य बनता है। विचारों का जैसा चुनाव करेंगे, भविष्य वैसा ही बन जाएगा। अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में समय मत गवाइए। जिस क्षण आप विचारों में उच्चता लाने का संकल्प करेंगे, वही क्षण आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बन जाएगा। किसी भी रचनात्मक विचार सारणी का चुनाव कर लीजिए। उसके बीजों का वपन आपके अंतःस्थल की गहराई में शुरू हो जाएगा। विचारों में ही जीने का अभ्यास कीजिए, आपका जीवन विचारमय हो जाएगा। इस मानसिक क्रिया का प्रभाव स्वयं ही आपके दैनिक चेष्टाओं में प्रकट होने लगेगा। विचार कभी प्रभाव शून्य नहीं रहते, प्रभाव प्रकट होने में देर भले ही हो जाए।
1: सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर युवा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2026 के जून महीने के आज 5 है और दिन है शुक्रवार। आज के हमारी पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी थंगजंग तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो प्यारे श्रोताओं, आइए सभा को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा को।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीत कार्यक्रम। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो श्रोताओं का समाचार।

6:45 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार। 7:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट।

7:35 पर आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सदा बहार। और इन सब के अलावा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:00।

0: भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today. He will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat across the road, power and industrial sectors. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary healthcare across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution grades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said, Ministry of Ayush has launched a yoga

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग, लेकर आया हूं प्रेम, शांति और विश्वास से भरा भक्ति गीत कार्यक्रम। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम, क्षमा और मानवता का सुंदर संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि अगर दिल में सच्चा विश्वास हो तो हर कठिन राह भी आसान हो जाती है। यीशु का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम एक दूसरे के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव रखें। जब मन परेशान हो तो प्रभु यीशु का नाम दिल को सुकून और आत्मा को शांति देता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उम्मीद, विश्वास और प्रकाश का मार्ग दिखाती है। और आज के इस विशेष भक्ति संगीत सफर में हम सुनने जा रहे हैं ताबायल नाबम और उनके साथियों से क्रिश्चियन भक्ति गीत। तो आइए दिल को प्रार्थना से जोड़िए, मन को विश्वास से भर लीजिए और शुरुआत करते हैं आज का भक्ति गीत कार्यक्रम।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम भक्ति गीत। आज के इस भक्ति गीत सफर में आप सुन रहे हैं ताबायाल नवम और उनके साथियों के आवाज में क्रिश्चियन भक्ति गीत। श्रोताओं, प्रभु यीशु का संदेश बहुत सरल है, प्रेम करो, क्षमा करो और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। जब जीवन की राह कठिन लगे तो प्रभु यीशु की शिक्षाएं दिल में नई उम्मीद जगा देती हैं। यीशु मसीह ने ही सिखाया कि सबसे बड़ी प्रार्थना वही है जो दिल से की जाए। जहां दया है, जहां करुणा है, वही प्रभु यीशु का प्रकाश है।

दोस्तों, इसी के साथ ही आज का भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू हो गई हो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त कारगे और आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे, वो खास प्रोग्राम जहां हर सुबह हम करते हैं योग, एक्सरसाइज और हेल्थ टिप्स की, ताकि आपका दिन हो एनर्जेटिक, फ्रेश और हेल्दी। दोस्तों, कहा जाता है अगर सुबह अच्छी हो जाए तो पूरी दिन भी अच्छा गुजरता है, और इसलिए इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं कुछ आसान योगासन, कुछ सिंपल एक्सरसाइज रूटीन और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ जरूरी हेल्थ टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सेहत को और बेहतर बना सकते हैं।

चलिए शुरुआत करते हैं आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम योग सेगमेंट के साथ। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या की। वो है जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन। आजकल बढ़ती उम्र, गलत लाइफस्टाइल, ज्यादा देर बैठकर काम करना या शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण घुटनों, कंधों और कमर के जोड़ों में दर्द होने लगता है। लेकिन अगर रोज थोड़ा सा योग और स्ट्रेचिंग किया जाए तो जोड़ों की लचक बढ़ती है, दर्द कम होता है और शरीर मजबूत बनता है। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान और असरदार योगासन।

सबसे पहला है तारासन। इसे करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उंगलियों को आपस में जोड़ लें। धीरे धीरे एरियों को ऊपर उठाकर फिर शरीर को ऊपर की ओर खींचें। 10 से 15 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। तारासन करने से आपके शरीर का संतुलन बेहतर होता है, जोड़ों की जकड़न कम होता है और रीढ़ और घुटनों को मजबूत बनाता है। अगला है वृक्ष आसन। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो, एक पैर को उठाकर दूसरे पैर की जांघ पर रखें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ ले। 15 से 20 सेकंड तक संतुलन बनाए रखें। इससे आपके घुटनों और टखनों को मजबूती मिलता है, शरीर का बैलेंस सुधरता है और जोरों की ताकत बढ़ाता है। अगला है भुजंग आसन। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, दोनों हथेलियों कंधों के पास रखें, धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाएं, 10 से 15 सेकंड तक रुकें और फिर वापस आए। इससे आपके रीढ़ और कमर के जोरों को मजबूती मिलता है और पीठ दर्द में राहत मिलती है। अगला है पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, एक या दोनों घुटनों को मोड़कर सीने से लगाएं। हाथों से पकड़कर 15 सेकंड तक होल्ड करें। इससे कमर और कूल्हों के जोरों को आराम मिलती है और गैस और पेट की समस्या में भी राहत मिलती है। अगला और अंतिम योगासन है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए आराम से बैठ जाएं, एक नाक से सांस ले और दूसरी से छोड़ें और इसे उल्टी दिशा में फिर से दोहराएं। 5 से 10 मिनट तक इसे आप करें। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है और सूजन और दर्द को कम करने में मददगार होती है। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सलाह। योग हमेशा धीरे धीरे और आराम से करें। अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। रोज 20 से 30 मिनट योग करने से जोरों की सेहत बेहतर रहती है। याद रखिए दोस्तों, अगर शरीर चलता रहेगा तो जोरों में जकड़न नहीं आएगी, इसलिए रोज थोड़ा योग कीजिए और सेहत को दीजिए एक नई ऊर्जा। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले योग सेगमेंट में। तब तक के लिए फिट रहिए, एक्टिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम में बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है आकृति कक्कर सोहम चक्रवर्ती मोनाली ठाकुर ने, फिल्म बिल्लू से।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हेल्थ सेगमेंट की ओर। दोस्तों, आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं हमारी सेहत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, वो है दांतों की देखभाल यानी टूथ केयर। अक्सर हम शरीर की सेहत को तो ध्यान रखते हैं।

लेकिन धातों और मुंह की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि स्वस्थ दांत सिर्फ मुस्कान को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। चले जानते हैं विस्तार से। दिन में दो बार ब्रश करना। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें। कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से ब्रश करें। इससे दांतों में जमा बैक्टीरिया और फ्लक हटता है, कैविटी और दांतों की सड़न से बचाव होता है।

अगला है जीभ की सफाई यानी टंग क्लीनिंग। रोजाना ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर से जीभ जरूर साफ करें। इससे मुंह की बदबू दूर होती है और बैक्टीरिया कम होती है। अगला है कुल्ला करने की आदत। दोस्तों, खाना खाने के बाद पानी से कुल्ला जरूर करें। इससे दांतों के बीच पसे खाने के कण हट जाते हैं और कैविटी बनने का खतरा कम होता है।

सही खान पान का महत्व। दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर भोजन करें, जैसे कि दूध हो, दही, फल और हरी सब्जियां, और बहुत मीठा और जंक फूड से बचें। इससे दांत मजबूत रहते हैं और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं।

और डेंटल केयर में अगला और अंतिम है नियमित डेंटल चेकअप। जी हाँ दोस्तों, हर 6 महीने में एक बार दंत चिकित्सक से जांच जरूर करवाएं। इससे दांतों की समस्या शुरुआती चरण में ही पता चल जाती है। दांतों की देखभाल के बड़े फायदे हैं, खूबसूरत और आत्मविश्वास भरा मुस्कान, मुंह की बदबू से छुटकारा, दांत और मसूड़े मजबूत और पाचन तंत्र भी बेहतर। याद रखिए दोस्तों, एक प्यारी मुस्कान की शुरुआत स्वस्थ और साफ दांतों से ही होती है। अगर हम रोज थोड़ी सी सावधानी रखें तो दांत जिंदगी भर मजबूत और स्वस्थ रह सकते हैं। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले हेल्थ सेगमेंट में। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी मुस्कान की चमक बनाए रखिए। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम में एक और बेहतरीन गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म बर्फी से।

दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुबह सवेरे में। दोस्तों हम लौटेंगे सुबह सवेरे के अगले गीत के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों आइए सुनते हैं सुबह सवेरे के अंत में एक और बेहतरीन गीत आवाज दी है के और सलीम मर्चेंट ने फिल्म इकबाल से।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे गालो कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे या पता नहीं श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: सी आकाशवाणी ईटानगर जी रोकला तनु प्रोग्राम मतामे मिलिम बिली कपि जप सुरु नुन तनु प्यो मिता पतो दो सिरो कपि युदु को इन सी दुयो अंका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु इनिकुन अलोहो न्यू दिल्ली गंदा हो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिग्वेज का आगे हो दुबुआ को दूला मुने हकदुकुंदुली हो अनिरु लीडर्स बायलिटरल रिलेशंस का फुल स्पेक्ट्रम में रिव्यू मिला होनी थी एवेन्यूज ऑफ कॉपरेशन में इन एनर्जी ट्रेड इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर ला ऑटोमोबाइल्स मिला में रिव्यू मुने हला लुको ने और सेक्रेटरी रुडेंद्र टंडन हु मीडिया आदमी लुको ने वेनेजुएला हु वर्ल्ड हो लार्जेस्ट वेल रिजर्व में पोसेस मुदो हला लुकोने होमो लुकोने तने सिलो का अन्यरु साइड दली हो का डिस्कशन मुने हु अन्यरु कंट्री हु एनर्जी पार्टनरशिप में दो के नेंदुपा फोकस मुने हो वेनेजुएला का एनर्जी सेक्टर फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो इला दो हला लुकोने होमो लुकोने तने वेनेजुएला हु इंडिया में स्टेबल डिमांडर पा कंसिडर मुदो हला लुकोने होमो अन्यरु का कन्वर्सेशन हो लीडर्स ग्लोबल और रीजनल इश्यूज का व्यूज में म्यूचुअल इंटरेस्ट हो एक्सचेंज मने हला लुको ने हो अन्यरु साइड हो कमिटमेंट में री एपार्मला बायलिटरल पार्टनरशिप हो ग्लोबल साउथ का इंटरेस्ट में एडवांस मने हला लुको ने ए नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन ऑन द न्यूली इनेक्टेड इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इनेकुन अलोहो अंडर प्रारम 2026 इनिशिएटिव्स में डोनी पोलो इंटरनेशनल होटल ईटानगर हो सक्सेसफुली मगने हला लुकोने हो सका प्रोग्राम में का

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 में।

नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ। और आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, और मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। दोस्तों, सुबह की शुरुआत अगर सही जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो तो पूरे दिन शानदार बन जाता है। इसलिए अगले कुछ मिनटों तक हम आपके लिए लेकर आएंगे देश की ताजा राष्ट्र खबरें, दुनिया भर की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां और अपने अरुणाचल प्रदेश के लोकल न्यूज के अपडेट्स, और साथ ही सुनवाएंगे कुछ बेहतरीन गीते। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के राष्ट्रीय खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में 18,777 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण गुजरात में 18,770 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना का संबंध बुनियादी ढांचे, परिवहन, जल आपूर्ति और औद्योगिक विकास से है। भारत नेपाल संबंधों को मजबूती देने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री भारत दौरे पर। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। यह नेपाल की नई सरकार बनने के बाद पहली उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय यात्रा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और सीमा सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की। 18 जून को होने वाली राज्यसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से तरुण चुग सहित कई प्रमुख नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और कई अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। मानसून के आगे बढ़ने से यात्रा और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। GDP आंकड़ों पर बाजार की नजर। आज जनवरी मार्च तिमाही के GDP आंकड़े जारी होने की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारत की विकास दर 7.2% के आसपास रह सकती है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य फोकस जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण है। भारत में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बड़ी प्रगति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और जल्द ही समझौता हो सकता है। मध्य पूर्व संकट पर दुनिया की नजर। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव तथा पश्चिम एशिया की स्थिति पर वैश्विक चिंता बनी हुई है। ऊर्जा आपूर्ति और तेल कीमतों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। रूस ने भारत के समर्थन का दोहराया भरोसा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत रूस संबंध मजबूत है और बाहरी दबावों के बावजूद दोनों देशों का सहयोग जारी रहेगा। भारत वेनेजुएला ऊर्जा सहयोग पर चर्चा। भारत और वेनेजुएला के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को लेकर उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। दोनों देश तेल और खनन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंता बढ़ी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तेज कार्रवाई की अपील की है। कई रिपोर्टों में जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता की कमी पर चिंता जताई गई है। वैश्विक व्यापार पर टैरिफ विवाद का असर। अमेरिका, यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक टैरिफ को लेकर चर्चा जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों का वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलिए रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर।
Indo-Myanmar border fencing begins amidst tight security. अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग और लोंगडिंग जिले में भारत म्यांमार सीमा पर बार लगाने का काम शुरू हो गया है। 2024 में यह गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1643 किलोमीटर लंबी पूरी भारत म्यांमार सीमा पर बार लगाने की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी, जहां एक ओर मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में स्थानीय समुदायों की ओर से इस कदम का बड़ा विरोध हुआ था। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल काम शुरू होने के बाद से यह लगातार आगे बढ़ रहा है। वेटरन लीडर ताई तागा गेट्स बीजेपी राज्यसभा टिकट। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार को लेकर चल रही कई दिनों की अटकलों को खत्म करते हुए राज्य के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के मौजूदा सलाहकार ताई तागक को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी ने तागक की उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा करते हुए बीजेपी के साथ उनके 3 दशकों के जुड़ाव और राज्य में संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका को सराहा। अरुणाचल इमर्जिंग एज नॉर्थ ईस्ट ग्रोथ इंजिन खांडू। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को कहा कि राज्य सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देख रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब इसे केवल एक दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह तेजी से पूर्वोत्तर के एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। रेमदो गांव क्वालिफाइज फॉर वर्ल्ड आर्म रेस्लिंग चैंपियनशिप। ऑल अरुणाचल प्रदेश आर्म रेस्लिंग एसोसिएशन ने एक विज्ञप्ति में बताया कि अरुणाचल प्रदेश के रेमदो गांव ने 29 मई से 2 जून तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित FAFI नेशनल आर्म रेस्लिंग और पैरा आर्म रेस्लिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर आगामी विश्व आर्म रेस्लिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर दिया है। डीसी एडवोकेट्स पंक्चुअलिटी सिंसियरिटी इन एजुकेशन सेक्टर। पापुमपारे के उपायुक्त लोबसंग सेरिंग ने इस बात पर जोर दिया कि समय की पाबंदी, ईमानदारी, समर्पण और पारदर्शिता हर सरकारी कर्मचारी के लिए बुनियादी स्तंभ है और उन्होंने शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों से इन पेशेवर नैतिक मूल्यों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। अंजाव टूरिज्म वेबसाइट लॉन्च्ड। अंजाव जिले के आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट anjotourism.nic.in, जिसे नेशनल इन्फोटेक्स सेंटर के जिला केंद्र ने तैयार किया है, को गुरुवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री दसांगलु फूल ने शुभारंभ किया। इंडियन आर्मी कंडक्ट्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट। भारतीय सेना के स्पीयर कोर के स्पीयर हेड डिवीजन ने बुधवार को यहां अपर सुबनसिरी जिले में एक वाइब्रेंट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस आयोजन में स्थानीय युवा, गांव वाले और भारतीय सेना के जवान एक साथ आए और खेल भावना, सांस्कृतिक सद्भाव तथा सामुदायिक भागीदारी को पूरा उत्साह के साथ जश्न मनाया। डीसी स्ट्रेसेस ऑन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद SWM रूल्स। पहुंपरे के डीसी लोबसंग सेरिंग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर SWM नियम 2026 का सख्ती से पालन करने के महत्व पर जोर दिया। JetPM अनाउंसेस नर्सिंग स्पॉन्सरशिप फॉर 10 स्टूडेंट्स। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 37th निर्वाचन क्षेत्र के 5 ओयान खंड के जिला परिषद सदस्य अन्नु पावो कोमुट ने पूर्वी सियांग जिले के योग्य छात्रों के लिए एक नर्सिंग प्रायोजन कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत 10 छात्रों को बेंगलुरु के कैपिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रायोजित किया जाएगा। चयनित प्रत्येक छात्र को अपनी शिक्षा में सहायता के लिए 50,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। युवा संगम डेलीगेट्स फ्रॉम अरुणाचल एंगेज इन कल्चरल एक्सचेंज इन यूपी। युवा संगम चरण 6 में भाग ले रहे अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में सीखने, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्र निर्माण के गतिविधियों से भरा एक समृद्ध दिन अनुभव किया। तो दोस्तों, आज के न्यूज सेगमेंट में बस इतना ही। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम में ये बेहद खूबसूरत गीत आवाज दी है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। आइए कार्यक्रम के अंत में एक और बेहतरीन गीत सुनते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, फिल्म दिल क्या करे से।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग एंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interior.

0: Get attractive offers up to rupees 52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और लेकर आया हूं संगीत, सुकून और मौसम की ताजगी से भरा आपका पसंदीदा कार्यक्रम सदा बहार। दोस्तों, हर दिन की शुरुआत तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब साथ हो मधुर संगीत और अपने शहर के मौसम की सही जानकारी। तो आइए देखते हैं आज के ईटानगर के मौसम का हाल। इस वक्त ईटानगर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। दोपहर तक का हाल, बादलों की आवाजाही बनी रहने की पूरी संभावना है। बीच बीच में बारिश रुक सकती है, लेकिन मौसम को देखकर लगता है कि दिन में फिर से फुहारे या बारिश लौट सकती है, इसलिए पूरी तरह साफ और धूप वाला दिन होने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। दोपहर और शाम, दिन चढ़ने के साथ हल्की से मध्यम बारिश के दौर आते जाते रह सकते हैं। कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। तापमान आरामदायक रहने और तेज गर्मी महसूस नहीं होगी। शाम और रात में भी बादल बने रहने की संभावना है। हल्की बारिश या बूंदाबांदी फिर से हो सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज ईटानगर में मौसम का मुख्य रंग रहेगा बादल और बारिश। अगर अभी बारिश हो रही है तो छाता साथ रखना आज पूरे दिन समझदारी होगी। और अब इस सुहाने बरसाती मौसम के साथ सुनते हैं एक बेहतरीन गीत फिल्म मुन्ना भाई MBBS से। जब दिल में प्यार के दस्तक होती है तो पायल की छनछन भी किसी मधुर संगीत जैसे लगने लगती है और हवाएं भी कोई प्यारा सा संदेश लेकर आती हैं। सुनते हैं सियारा घोषाल और विनोद राठौड़ के मधुर आवाज में फिल्म मुन्ना भाई MBBS से ये गीत।

दोस्तों, अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम सदाबहार, जहां हर गीत दिल की किसी न किसी खूबसूरत भावना को छू जाता है। और अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसे सुनते ही प्यार की मासूमियत, पहली धड़कने और अनकहे जज्बात याद आ जाते हैं। कभी कभी दिल में कुछ एहसास ऐसे जन्म लेते हैं जिनका जवाब ना हमें पता होता है और ना सामने वाले को। प्यार क्यों होता है, दिल क्यों बेचैन होता है और किसी की यादें क्यों हर पल साथ रहती हैं, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को शुरू में पिरोया गया है फिल्म कहो ना प्यार है के इस सदाबहार नगमे में, ना तुम जानो ना हम। इस गीत को अपने दिलकश

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ आज के सदाबहार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। उम्मीद करता हूँ आज का अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।

0: लगती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां

0: ढूंढ आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार

0: एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
5: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej and Sarigam GIDC, modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
4: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। दोस्तों हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Artemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Hello, Ita Nagar.

दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर और शुरू हो चुका है कार्यक्रम हेलो ईटानगर। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम करेंगे देर सारी बातें। टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट में हम जानेंगे आज के दिन के इतिहास के पन्नों में क्या क्या खास दर्ज हुआ है।

दुनिया से जुड़ी रोचक बातें सुनेंगे और साथ ही सुनेंगे एक सुकून भरे मधुर गीत जो आपके मन को तरोताजा कर देंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट में। 5 जून यानी आज के दिन वर्ष 1972 को स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र का ऐतिहासिक पर्यावरण सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें भारत ने भी सक्रिय भागीदारी की। इसके बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर नीतियों और जागरूकता अभियानों की गति मिली। वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई। 5 जून 1984 को भारतीय सेना ने अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। यह भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित और संवेदनशील सैन्य कार्रवाइयों में से एक मानी जाती है। वर्ष 1999 कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की कार्यवाही। 5 जून 1999 को कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेनाएं दुश्मन की घुसपैठ को पीछे धकेलने के लिए लगातार अभियान चला रही थी। यह युद्ध भारत की सैन्य वीरता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय पर्यावरण आंदोलनों को मिली नई पहचान। 5 जून के अवसर पर भारत में हर वर्ष वृक्षारोपण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक अभियान चलाए जाते हैं जिन्होंने पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए रुक करते हैं विश्व इतिहास पर आज क्या क्या घटनाएं घटी हैं। वर्ष 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन का उद्घाटन। 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र का पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन शुरू हुआ। यही सम्मेलन आगे चलकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की नींव बना। वर्ष 1947 अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल की ऐतिहासिक घोषणा। 5 जून 1947 को जॉर्ज सी मार्शल ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए प्रसिद्ध मार्शल प्लान की घोषणा की थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को आर्थिक रूप से पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1963 6 दिवसीय युद्ध की शुरुआत। 5 जून 1967 को मध्य पूर्व में सिक्स डे वॉर शुरू हुआ जो आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक माना जाता है। 2004 रोनाल्ड रीगन का निधन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का निधन 5 जून 2004 को हुआ था। वे 20वीं सदी के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। तो दोस्तों 5 जून का दिन इतिहास में पर्यावरण संरक्षण, सैन्य घटनाओं, वैश्विक कूटनीति और विश्व राजनीति की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। इतिहास हमें सिखाता है कि प्रकृति की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और मानवता की प्रगति तीनों ही हमारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। और अब इस प्रेरणादायक सोच के साथ लेते हैं खूबसूरत सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए हेलो ईटानगर।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब बात करते हैं आज के दिन कौन सी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज 5 जून है और ये दिन पूरी दुनिया में एक बेहद महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। आज

विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण जागरूकता अभियान माना जाता है, जिसमें 150 से अधिक देश भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई थी। 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने 5 जून को हर वर्ष एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाने की घोषणा की। पहला विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1974 को मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, वायु प्रदूषण को कम करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाना और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। पर्यावरण क्यों महत्वपूर्ण है? हमारी पूरी जिंदगी पर्यावरण पर निर्भर है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पानी जीवन का आधार है, मिट्टी भोजन उपलब्ध कराती है, वन्य जीव परिस्थिति की संतुलन बनाए रखते हैं। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आज के हेलो ईटानगर में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये अगला खूबसूरत गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, फिल्म क्या दिल ने कहा सी।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक वर्षों के अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया था और 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव भी रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर कर

0: द्वारा किए गए अथक परिश्रम का परिणाम है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगा हारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। फाइनल में पहुंचने वाली टीम का सामना जापान या पूल बी की शीर्ष टीम से होगा। भारत का पूल ए में 9 अंकों के साथ दूसरा स्थान है। टीम ने ग्रुप चरण में चीनी ताइपे पर 13-1 की शानदार जीत दर्ज की है। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला टीम का सामना भारतीय समयानुसार आज सुबह 9:30 बजे चीन से होगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, केरल और माहे, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasana Championships to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said, Ministry of Ayush has launched Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities.
2: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide. Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions taken by the Monetary Policy Committee at 10 this morning in Mumbai. The six-member MPC started its three-day deliberations on Wednesday. In April, the Reserve Bank had kept its key policy rate unchanged. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and UK's Foreign Secretary Vet Cooper held first annual meeting in New Delhi yesterday to review India-UK Vision 2035. Both ministers reviewed the progress made under all five pillars of India-UK Vision 2035, including growth, technology and innovation, defence and security, climate and clean energy and education. The ministers welcomed opportunities unblocked by the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, and looked forward to its early entry into force. They expressed satisfaction at the progress on various initiatives under India-UK Technology Security Initiative, including in the fields of artificial intelligence and critical minerals. Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic

0: economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. Nepal's Minister for Foreign Affairs, Shishir Khanal, will be on a three-day visit to India beginning today. He is visiting India at invitation of External Affairs Minister S. Jaishankar. During the visit, Mr. Khanal will meet Dr. Jaishankar in New Delhi. In a statement, Foreign Ministry of Nepal said that the two sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. Heavy to very heavy rainfall is expected during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahi. North interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Andaman Nicobar Islands, Tripura and Andhra Pradesh are also likely to experience rainfall today. And that is the end of this news bulletin.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद कार्यक्रम फिल्मी गपशप के साथ।
2: Sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप, एक ऐसा शो जहां हर दिन खुलते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया के नए नए राज, नई कहानियां और ताजा अपडेट्स। तो अगर आपको जानना है कि आपका पसंदीदा सितारे इन दिनों क्या कर रहे हैं, कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, कौन सा गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कौन सी वेब सीरीज बनी हुई है दर्शकों की पहली पसंद, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आइए देखते हैं आज के बॉलीवुड के ताजा तरीन गॉसिप और अपडेट्स पर एक नजर। रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज का जलवा अभी भी बरकरार। दोस्तों रणवीर सिंह की मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। फिल्म 77 दिनों के बाद भी शानदार कमाई कर रही है और 1150 करोड़ के आंकड़े को छूने से बस थोड़ा पीछे रह गए। अब इसका ओटीटी वर्जन रो एंड अंडे का भी रिलीज हो चुका है, जिसमें अतिरिक्त सीन्स और अनकट एक्शन देखने को मिलेगा। भाई साहब रणवीर सिंह की जासूसी दुनिया अभी खत्म नहीं हुई, थिएटर के बाद अब ओटीटी पर भी मिशन जारी है। वरुण धवन की नई फिल्म रिलीज, वीकेंड क्लास शुरू आज रिलीज हुई है। हे जवानी तो इश्क होना है, जिसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आ रहे हैं। वरुण धवन की कॉमेडी स्टाइल, रोमांस और फैमिली कंफ्यूजन का पूरा पैकेज इस फिल्म में देखने को मिलेगा। अगर आपको हंसी प्यार और पागलपंती पसंद है तो इस वीकेंड के टिकट बुक कर लीजिए। बॉबी डेवल की बंदर को लेकर बड़ी उत्सुकता। अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर बंदर भी आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बॉबी डेवल के इंटेंस लुक और डार्क स्टोरी लाइन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। तो एनिमल के बाद बॉबी डेवल फिर एक डार्क अवतार में लौट रहे हैं और फैंस पूरी तरह एक्साइटेड है। दोस्तों इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी ताजा तरीन अपडेट्स के साथ, बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में।

दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। ओटीटी पर माधुरी दीक्षित की शानदार वापसी, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई माँ बहन इस समय ओटीटी की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हैं। माधुरी दीक्षित, तृप्ति दिमरी और धरना दुर्गा की इस डार्क क्राइम कॉमेडी को दर्शकों का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। माधुरी जी ने साबित कर दिया है कि चार्म और एक्टिंग का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। तृप्ति दिमरी फिर सोशल मीडिया की क्वीन बनी। माँ बहन रिलीज होने के बाद तृप्ति दिमरी के सीन्स

और डायलॉग रील्स पर तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस उनके परफॉर्मेंस को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। नेशनल क्रॉस का टाइटल अभी भी पूरी मजबूती से कायम है। म्यूजिक वर्ल्ड में शायरा का नाम ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली की सिंगर सॉन्ग राइटर शायरा आज इस अपना पहला मल्टी सिटी म्यूजिक टूर शुरू कर रही है। जंडी और बॉलीवुड फ्यूजन म्यूजिक लवर्स के बीच इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो नई आवाजें, नए सुर और नए सपने म्यूजिक लवर्स के लिए ये बड़ी खबर है। शाहरुख खान की अगली फिल्म को लेकर बड़ी उत्सुकता। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की अगली एक्शन फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। इंडस्ट्री के गलियारों में खबर है कि फिल्म की शूटिंग का अगला बड़ा शेड्यूल इसी महीने शुरू होने वाला है। तो फैंस खास तौर पर फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और इंटरनेशनल लोकेशंस को लेकर उत्साहित है। एक्स और इंस्टाग्राम पर एसआर के नेक्स्ट मूवी लगातार चर्चा में बना हुआ है। जब जब शाहरुख खान की किसी नई फिल्म का इशारा देते हैं तो फैंस का दिल कहता है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।

दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉलीवुड की ताजा तरीन अपडेट्स कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दीपिका पादुकोण के हॉलीवुड प्रोजेक्ट की चर्चा। दीपिका पादुकोण को लेकर खबरें हैं कि वो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए बातचीत कर रही है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन एंटरटेनमेंट पोर्टल्स में इसे लेकर काफी चर्चा है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि दीपिका एक बार फिर भारत का नाम वैश्विक मंच पर रोशन करेगी। कियारा सिद्धार्थ की नई तस्वीरें वायरल। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की हालिया तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। फैंस उनके सादगी भरे अंदाज और केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कपल गोल्स वाले पोस्ट और फैन एडिट्स लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। साउथ बॉलीवुड कोलैबोरेशन का नया दौर। इन दिनों बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। कई बड़े निर्देशक और सितारे फैम इंडिया प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। नई फिल्मों में हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ कलाकारों को एक साथ देखने को ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। अब सिनेमा की कोई बाउंड्री नहीं है दोस्तों, कहानी अच्छी हो तो पूरा देश उसका फैन बन जाता है। फिलहाल एक और बेहतरीन गीत सुनते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। रियलिटी शोज में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की तैयारी। टीवी इंडस्ट्री में चर्चा है कि कई लोकप्रिय रियलिटी शो जल्द ही नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट लाने वाले हैं।

सोशल मीडिया पर फैंस अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के नाम सुझा रहे हैं और इसे लेकर खूब बहस चल रही है। न्यू जनरेशन स्टार्स की बढ़ती लोकप्रियता। युवा कलाकारों में तृप्ति धिमरी, वेदांग रैना, आदर्श गौरव और कई नए चेहरे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। निर्माता और निर्देशक अब नई प्रतिभाओं को बड़े प्रोजेक्ट्स में मौका देने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीकेंड थिएटर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज बॉक्स ऑफिस पर कई दिलचस्प फिल्में रिलीज हुई हैं। आइए देखते हैं इन्हीं फिल्मों को एक नजर। सबसे पहला है हे जवानी तो इश्क होना है। स्टारकास्ट है वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, निर्देशक डेविड धवन। एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और कहानी है, फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी है जिसकी शादीशुदा जिंदगी और नई प्रेम कहानी के बीच जबरदस्त उलझन पैदा हो जाती है। विदेश की खूबसूरती, लोकेशंस, कॉमेडी ऑफ अफेयर्स और फैमिली ड्रामा फिल्म की मुख्य खासियत है। अगर आपको 90s और 2000s वाली डेविड धवन स्टाइल कॉमेडी पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए वीकेंड एंटरटेनर साबित हो सकती है। अगला है बंदर। स्टारकास्ट है बॉबी देओल, निर्देशक अनुराग काश्यप। ये क्राइम थ्रिलर डार्क ड्रामा सिनेमा है। कहानी है एक डार्क और गंभीर थ्रिलर है जिसमें एक टीवी स्टार की जिंदगी अचानक बड़े आरोपों और रहस्यमय घटनाओं में उलझ जाती है। फिल्म पहले कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में चर्चा बटोर चुकी है और आज आधिकारिक रूप से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। तो एनिमल के बाद बॉबी देओल का यह शायद सबसे अलग और गंभीर अवतार माना जा रहा है। मास नहीं, क्लास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म। अगला है फैडी। रामचरण स्टारकास्ट है और ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। हालांकि ये फिल्म 4 जून को रिलीज हुई थी लेकिन आज भी पूरे भारत में इसका जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। पहले ही दिन फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामा और रामचरण का दमदार स्क्रीन प्रेजेंस पसंद है तो फैडी इस वीकेंड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है।

दोस्तों, आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्मों को लेकर दर्शकों की पहली प्रतिक्रिया अब आनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी आधिकारिक डे वन बॉक्स ऑफिस आंकड़े पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती ट्रेंड्स और पब्लिक रिएक्शन काफी दिलचस्प है। सबसे पहले देखते हैं आज रिलीज हुई फिल्म है जवानी तो इश्क होना है पर एक नजर। फर्स्ट डे फर्स्ट तो पब्लिक रिव्यू पर देखते हैं एक नजर। सोशल मीडिया पर शुरुआती दर्शकों का कहना है कि फिल्म पूरी तरह डेविड धवन स्टाइल फिल्मी एंटरटेनर है। दर्शकों को क्यों पसंद आया? वरुण धवन की कॉमिक टाइमिंग, कलरफुल सॉन्ग्स और लोकेशन, लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की स्क्रीन प्रेजेंस। कुछ लोगों की शिकायत है कहानी बहुत नई नहीं लगती, कुछ जोक्स पुराने बॉलीवुड फॉर्मूला वाले हैं। तो अगर आप लॉजिक नहीं लाफ्टर ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म को रिलीज से पहले काफी बज मिला था और वरुण की रोम कॉम वापसी को लेकर फैंस उत्साहित थे। तो अभी अंतिम आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन ट्रेड सर्कल्स के अनुसार ओपनिंग ऑक्यूपेंसी अच्छी मानी जा रही है, खासकर मल्टीप्लेक्सेस और मेट्रो सिटीज में। डे वन कलेक्शन के 8 से 12 करोड़ रेंज में रहने की चर्चा हो रही है। हालांकि ये अभी आधिकारिक नहीं है, रिलीज और एडवांस बज मजबूत रहा है। और आज जो रिलीज हुए हैं, अगला है वो है बंदर बॉबी डेवल का। फर्स्ट डे फर्स्ट शो पब्लिक रिव्यू फॉर एक नजर। बॉबी डेवल की इस डार्क थ्रिलर को मास ऑडियंस से ज्यादा क्रिटिक्स और थ्रिलर लवर्स पसंद कर रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स है बॉबी डेवल का इंटेंस परफॉर्मेंस, डार्क एटमोस्फियर, सीरियस स्टोरी लाइनिंग, स्टोरी सस्पेंस एलिमेंट। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं है, स्लो पेस कुछ दर्शकों को भारी लग रही है। तो एनिमल वाले बॉलीवुड को पसंद किया था तो बंदर का डार्क वर्जन आपको और ज्यादा पसंद आ सकता है। फिल्म नीच ऑडियंस को टारगेट कर रही है, इसलिए ओपनिंग मॉडरेट मानी जा रही है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो वीकेंड कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगला है फैडी। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी फिल्म की है तो वो है फैडी। इसे फैंस ने 5 out of 5 star दिया है। खासतौर पर रामचरण की परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स ड्रामा इमोशन, बैकग्राउंड

म्यूजिक और क्लाइमेक्स सीक्वेंसेस के लिए कि जमकर तारीफ हो रही है। तो थिएटर के अंदर सीटिया और बाहर सोशल मीडिया पर तारीफें, फेडी ने दोनों जगह स्कोर कर दिया है। यह फिल्म पहले दिन ही दुनिया भर में 112 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है, जो 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में शामिल हो गई है। तेलुगु मार्केट में जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये था आज रिलीज हुए फिल्मों के रिव्यू पर एक नजर। आप बने हुए हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। लीजिए एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं ये 120 बहादुर फिल्म से ये खूबसूरत गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। दोस्तों, बॉलीवुड की तरह ही टीवी इंडस्ट्री में भी इन दिनों खूब हलचल मची हुई है। कहीं सीरियल्स में शॉकिंग ट्विस्ट आ रहे हैं तो कहीं रियलिटी शो में नए कंट्रोवर्सीज और सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की सबसे चर्चित टीवी दुनिया की खबरें। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बड़ा ट्विस्ट। टीवी के सबसे चर्चित फैमिली ड्रामा सीरीज क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस हफ्ते कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। तुलसी ने आखिरकार घर की जिम्मेदारी नंदिनी को सौंपते हुए घर की चाबियां दे दी। वहीं रियो के किरदार को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है क्योंकि उसने परिवार को एक बड़े संकट से बचाया। सोशल मीडिया पर तुलसी और रियो लगातार चर्चा में है। तुलसी के फैसले ने पूरे परिवार का समीकरण बदल दिया है और दर्शक अब अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हिना खान वर्सेस शिल्पा शिंदे विवाद पर चर्चा में। टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों हिना खान और शिल्पा शिंदे से जुड़ी पुराने विवादित बातें पर चर्चा में हैं। कई इंटरव्यू और सोशल मीडिया रील्स वायरल हो रहे हैं। टीवी की दुनिया में पुराने विवाद भी कभी कभी नई एपिसोड्स की तरह वापस आ जाते हैं। रियलिटी शो में वाइल्ड कार्ड और सरप्राइज एंट्री का दौर। कलर्स और अन्य चैनलों के रियलिटी शो में नए कंटेस्टेंट और वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का लेकर चर्चाएं तेज हैं। रियलिटी फॉर्मेट शो में ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए मेकर्स लगातार नए ट्विस्ट ला रहे हैं। द 50 रियलिटी शो बना चर्चा का केंद्र। इस साल का चर्चित रियलिटी शो द 50 अभी भी टीवी और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। शो का फॉर्मेट, सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट और स्ट्रेटेजिक गेम प्ले दर्शकों को पसंद आ रहा है। तो बिग बॉस के बाद अगर किसी रियलिटी शो की सबसे चर्चा हुई है तो वो है द 50। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की खुशखबरी अभी भी ट्रेंड में है। टीवी के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया हाल ही में जुड़वा बच्चों के माता पिता बने हैं। फैंस लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। तो छोटे पर्दे के इस प्यारे कपल के घर अब डबल खुशी आई है। मलयालम टीवी का लोकप्रिय शो हुआ ऑफ एयर। मलयालम टेलीविजन का लोकप्रिय शो मोनारगम लगभग 1700 एपिसोड पूरे करने के बाद बंद हो गया है। शो के कलाकारों और फैंस ने भावुक संदेश साझा किए हैं। कई सालों तक दर्शकों का मनोरंजन करने वाला एक और यादगार शो अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। डेली सोप्स में लीप सीजन शुरू। कई लोकप्रिय हिंदी सीरियल्स में अगले कुछ हफ्तों में लीप आने की खबरें हैं। इससे नया कलाकारों की एंट्री और नई कहानी देखने को मिल सकती है। टीवी दर्शकों के बीच इसको लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े आज के ताजातरीन अपडेट्स। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी सी।

दोस्तों, इसी के साथ आज के फिल्मी गपशप कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु

0: second in Pool A with 9 points. The team ended the group stage with a dominant 13-1 victory over Chinese Taipei after its only defeat game against host Japan. And that is the end of this news bulletin.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आप सबका फेवरेट म्यूजिकल शो रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां आपके टेक्स्ट मैसेजेस तय करते हैं कि अगला गाना कौन सा बजेगा। जी हां, आप हमें एसएमएस के जरिए भेजते हैं अपनी पसंद के गाने, अपना नाम, अपनी जगह और अगर चाहे तो किसी खास दोस्त, फैमिली मेंबर्स या स्पेशल पर्सन के लिए डेडिकेशन भी। हमारा नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9436887808। आपकी फरमाइश को पहुंचाते हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश और आसपास के इलाकों के लिसनर्स तक सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। बस आप हमारे नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग सुनना चाहते हैं या किसी अपनों को एक प्यारा सा म्यूजिकल सरप्राइज देना चाहते हैं तो भेजते रहिए अपना मैसेज और जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला मैसेज। ये मैसेज हमें मिला है हमारे एक प्यारे लिसनर की तरफ से, लेकिन दोस्तों आपने अपना नाम हमें मेंशन नहीं किया है। कोई बात नहीं दोस्त, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है और आपकी फरमाइश भी, आपने रिक्वेस्ट किया है ले जा रे। लेकिन दोस्त एक छोटी सी बात है, आपने सिंगर को तुलसी कुमार का नाम लिखा है लेकिन हमारे म्यूजिक लाइब्रेरी में इस गाने का वर्जन मौजूद है जिसे अपनी खूबसूरत आवाज से सजाए हैं श्रेया घोषाल और उस्ताद सुल्तान खान ने। उम्मीद है आपको ये वर्जन भी उतना ही पसंद आएगा। तो हमारे एनोनिमस लिसनर्स, आपकी प्यारे से फरमाइश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अब खो जाते हैं इस मधुर और सोलफुल मेलोडी में।

और दोस्तों अब बारी है एक और दिल को छू लेने वाली फरमाइश की। ये मैसेज भेजा है रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लकी ने गोलाघाट असम से। आप सभी को रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से नमस्कार। और दोस्तों ये गाना डेडिकेट किया गया है अमोल, बिमल, बाइकोन, जोगेंद्र और सोनाली को। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही एवरग्रीन और इमोशनल क्लासिक सॉन्ग नफरत की दुनिया चोर के फिल्म हाथी मेरे साथी से। दोस्तों ये गाना मोहब्बत, इंसानियत और रिश्तों की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयां करती हैं। तो रमेश पात्रो, रुनू पात्रो और लकी जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश और खास डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: सिमी और हिसार।
1: दोस्तों इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और दोस्तों अब बारी है एक बहुत ही खास और दिल से भेजे गए मैसेज की। ये प्यारा सा मैसेज भेजा है गुम्मे माई बागरा और इनके पति ने, हिगे बागरा विलेज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश से। आप दोनों को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक एवरग्रीन और बेहद रोमांटिक गीत तेरे मेरे बीच में, फिल्म एक दूजे के लिए से। और दोस्तों इस गाने के साथ गुम्मे माई जी और उनके पति ने एक खास संदेश भी देना चाहा है। वो अपनी तरफ से एडवोकेट केनबम बागरा को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने गुम्मे माई जी को गाने को अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके उनकी प्रतिभा को और अधिक लोगों तक पहुंचाया। गुम्मे माई बागरा और उनके पति की तरफ से संदेश है एडवोकेट केनबम बागरा जी को, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग और प्रोत्साहन ने हमें और भी हौसला दिया है। हमारी आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम दोनों की तरफ से आपका आभारी हूं। तो एडवोकेट केनबम जी, अरुण एफएम की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं और ऐसे ही प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते रहिए। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये खूबसूरत और यादगार मेलोडी।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। हम इस कार्यक्रम के शेष भाग को सुनेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद। डायनामिक परफॉर्मेंस।

0: sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: रेडियो डिमांड में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब बारी है एक प्यारे सी फरमाइश की। ये मैसेज भेजा है मिस आलुम ने। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मिस आलुम ने अपने मैसेज में सिर्फ गाने का नाम तेरे लिए लिखा है, लेकिन फिल्म या सिंगर का नाम मेंशन नहीं किया है। इसलिए हम अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी से इसी टाइटल का एक बहुत ही खूबसूरत और एवरग्रीन गीत चुना है मिस आलम के लिए, फिल्म वीर जारा से। और इस दिल को छू लेने वाले गाने को अपनी सुरीली आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर ने। तो मिस आलम जी, उम्मीद है आपको हमारी तरफ से चुना गया ये वर्जन जरूर पसंद आएगा। आपकी प्यारे से फरमाइश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

और दोस्तों अब वक्त हो चुका है एक और बेहतरीन फरमाइश का। ये मैसेज भेजा है अमाल बासुमतारी ने। अमाल जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका दिल से शुक्रिया और नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला 90s का सुपरहिट गीत तेरे हुए पानी में, फिल्म दलाल से। दोस्तों ये गाना अपनी मधुर धुन और खूबसूरत बोलो की वजह से आज भी म्यूजिक लवर्स के लिए दिलों में खास जगह रखता है। तो अमाल बासुमतारी जी, आपकी इस प्यारी सी रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों अब खो जाइए इस सोलफुल और रोमांटिक मेलोडी के साथ तेरे हुए पानी में, सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till the stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब वक्त हो चुका है एक और बेहतरीन फरमाइश का, और ये हमें भेजा है जोगेंद्र रोंगफी, धोरमकिरी रोंगफी और सोनाली इंटिफिनी, ग्राम सरिहाजान, जिला कार्बी अंगलोंग से। आप सभी को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही मस्ती भरा और यादगार क्लासिक गीत, जैसा देश वैसा बेस, फिल्म देश परदेश से। और इस खूबसूरत गीत को अपनी मधुर आवाजों से सजाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। दोस्तों, ये गाना अपने मस्ती मेलोडी और खूबसूरत बोलो के लिए आज भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना अपने जमाने में था। तो जोगेंद्र, धोरमकिरी और सोनाली जी, आपकी इस प्यारी सी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों, अब बारी है एक बहुत ही खास डेडिकेशन मैसेज की। ये मैसेज भेजा है हितेंद्र दास, मानस दास, शेफाली दास, मानव दास और बरसात दास ने, कुडाली विलेज डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि असम से। आप सभी को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से नमस्कार। और दोस्तों, इन्होंने अपनी इस फरमाइश को आकाशवाणी ईटानगर के सभी आरजेएस और अनाउंसर के लिए डेडिकेट किया है। इनकी पसंद एक बहुत ही प्रेरणादायक और जोश से भरा एवरग्रीन गीत जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, फिल्म मेरी जंग से। दोस्तों, ये गाना हमें जिंदगी की हर चुनौती का सामना हिम्मत और हौसले के साथ करने की प्रेरणा देता है। तो हितेंद्र दास जी और आपके पूरे परिवार, आपके इस खूबसूरत फरमाइश और स्पेशल डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी ईटानगर के सभी आरजेएस को आपकी श्रोताओं की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार।

तो दोस्तों, इस बेहतरीन गीत के साथ आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। हम कल फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन रेडियो ऑन डिमांड के प्रेस एपिसोड के साथ। और दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ही स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती थांगजांग तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आरजे दागमे नानास जी। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। और तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी कारगर रिबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मनोरंजन के गुलदस्ते से,
1: प्यार भरे अल्फाजों में,
0: दिल से दिल की बात,
1: बस आपके नाम।
0: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the lap unchanged at 5.25%.
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। बैंक ने अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों द्वारा इक्विटी उपकरणों में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम श्री मोदी का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह अत्याधुनिक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार प्रणालियों और स्वचालित मौसम स्टेशनों के विस्तारित नेटवर्क के साथ मौसम संबंधी प्रेक्षणों को एकीकृत करेगा, जिससे वास्तविक समय में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता और पूर्व चेतावनी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलू ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। पुरुष अंडर 18

एक नया पैगाम आया है, सज गए हैं महफिल, नया सलाम आया है। खोल दीजिए अपने दिल के दरवाजों को, आपके शहर में रेडियो का ये हसीन जाम आया है। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास और आप जुड़े हैं मेरे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, इससे पहले आपके साथ जुड़े थे आप सबके चहेते आरजे कारगिल रिवार, जो बने हुए थे आपके साथ हमारी पहली प्रसारण सभा में। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 11:11, यानी अब से शुरू होगा आरजे ननास का सिलसिला और उसके साथ हमारा संगीत में सफर। तो चलिए ले दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता के नंद कुमार। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होने वाला है ये संगीत में सफर और भी ज्यादा रंगीन। तो दोस्तों, इस संगीत में सफर को शुरू करेंगे हम हमारे पहले कार्यक्रम के साथ, फिल्मी लहर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दिल के पास एक गुजारिश है और धड़कन के बस एक ही ख्वाहिश है, ना जमीन की चाहत है ना आसमान की फरमाइश है। बस थाम कर सुनिए इस आवाज को और गौर से, क्योंकि आज हवाओं में भी मोहब्बत की गुजारिश है। जी हाँ दोस्तों, लीजिए ये पेश है आप सबके सामने एक बेहतरीन गाना फ्रॉम द फिल्म गजनी, जिसे गाया है जावेद अली और सोनू निगम ने, और इस गीत के संगीतकार है A.R. रहमान। तो लीजिए एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, मैं लौट कर आता हूँ, सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: तो श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम फिल्मी लहर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे वेस्टर्न मेलोडीज।
1: Hello everyone and welcome to Akashwani Itanagar. You're listening to Western Melodies and I'm your host Coco. Today's playlist is packed with unforgettable pop hits filled with love, heartbreak, confidence, memories and powerful emotions. From classic favorites to energetic party songs, we got everything for everyone.

0: with that, we came to the end of today's episode of Western Melodies here on Akashwani Itanagar. I'm your host, Coco. Thank you for spending this beautiful moment with us. I hope today's song brought back memories, emotions, and good energy. Until next time, stay safe, stay happy, and keep listening to good music. Bye-bye.
1: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे वेस्टर्न मेलेडीज आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात. और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम.

0: भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गजल में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट आरजे ननास, और आप मेरे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103।

Come. हमसे भी सब

और इसी के साथ श्रोता दोस्तों समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम गजल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे गीत।

नमस्कार श्रोता दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीतमाला में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे नरास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, ये एक विशेष कार्यक्रम है जहां हम पेश करते हैं, यानी डेडिकेट करते हैं हमारे सारे गाने हमारे सरहद पे खड़े जवानों के लिए। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला गाना फ्रॉम द फिल्म लुटेरा, जिसे गाया है मोनाली ठाकुर ने। गीत है सवार लो, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों, धड़कनों को भी एक अजीब सा सुकून मिल जाता है जब मोहब्बत का कोई पुराना नगमा लबों पे आता है। क्या आपको पता है, नदीम सरावन की जोड़ी ने इस फिल्म का म्यूजिकल साल 1997 में ही तैयार कर लिया था, लेकिन फिल्म डिले होने की वजह से ये 3 साल बाद रिलीज हुई, और जब रिलीज हुई तो सुनामी आ गई। जी हाँ दोस्तों, ये गीत है दिल ने ये कहा है दिल से, फ्रॉम द फिल्म धड़कन, जिसे गाया है उदित नारायण, आलका याग्निक और कुमार सानू ने। तो दोस्तों लीजिए, ये पेश है आप सबके लिए।

चलिए दोस्तों, बेरेप से उसके साथ समाप्त करना होगा हमारा कार्यक्रम गीत माला। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों, अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर के साथ, और फिर आप सुनेंगे हिंदी क्लासिक म्यूजिक।

0: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर मित्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% बनाए रखा है, जबकि नीतिगत रखा गया है।
1: हमने दीर्घ आर्थिक और वित्तीय स्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार समीक्षा की है। समिति ने सर्वसम्मति अंतर्गत नीति को 5.25 ही बनाए रखने निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले 6.9% से घटाकर 6.6% है। उद्योग संगठन एसोसिएशन ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक संरचना योजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री आज शाम जाएंगे।
2: बड़ी गति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच गति को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के महत्वपूर्ण खंड को जिससे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर खूंट आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रैफिक में लगभग 3 लाख रुपए का विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े एक है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा। कर्नाटक के जल मंत्री रामलिंगा रेड्डी अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर बेंगलुरु जल संसाधन
3: ने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल

0: को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. The Reserve Bank of India has kept interest rates unchanged for the second time in a row in the current financial

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। दोस्तों, जिंदगी के सफर में अक्सर पुरानी राहें याद आती है, और जब गुनगुनाता है कोई पुराना गीत तो बीती हुई बातें याद आती है। कुछ पन्ने पलटने में जो सुकून है वो नए जमाने की रफ्तार में कहा। दोस्तों, कुछ पन्ने पलटने में जो सुकून है वो नए जमाने की रफ्तार में कहा। चलिए आज फिर उन्हीं यादों का एक नया आसमान सजाते हैं। आइए सुनते हैं इस शो में दोस्तों पहला गाना, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, फ्रॉम द फिल्म ब्रह्मचारी, जो बनी थी 1968 को। लीजिए दोस्तों पेश है ये बेहतरीन सॉन्ग, खूबसूरत नगमा।

कानों में सिर्फ शोर नहीं जज्बात होते थे। जी हाँ दोस्तों, ये है मोहम्मद रफी साहब की दीवानगी भरी आवाज में फ्रॉम द फिल्म प्रोफेसर। आइए सुनते हैं ये बेहतरीन गीत ए गुलबदन, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to Rs. 52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। दोस्तों सोचिए क्या जमाना था वो 1960 से लेकर 1980s का। आजकल के गाने 3 महीने में पुराने हो जाते हैं, पर उस दौर के गाने 3 जेनरेशन के बाद भी उतने ही नए लगते हैं। दोस्तों उस जमाने के गानों में सिर्फ राइमिंग नहीं होती थी, बाकायदा शायरी होती थी। मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी, शायर लुधियानवी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब लिखते थे तो ऐसा लगता था जैसे दिल का हाल किसी ने पन्नों पर उतार दिया हो। आज तो सब कुछ कंप्यूटर और लूप्स पर बन जाता है, पर उस दौर में 100 म्यूजिशियन एक बड़ा सा हॉल में बैठकर एक साथ लाइव इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। अगर एक ने भी गलत ढोकला बजा दिया तो पूरा गाना फिर से रिकॉर्ड करना होता था। इमेजिन द डेडिकेशन। और उसी डेडिकेशन को डेडिकेट करते हुए आइए सुनते हैं ये बेहतरीन गाना, मेरे उम्र के नौजवानों, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल।

दोस्तों, जब बात आवाजों की हो तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। किशोरदा, रफी साहब, लता मंगेशकर और आशा भोसले, जिसके बिना हर हीरोइन की आवाज अधूरी लगती थी, ये वो लोग थे जिन्होंने गानों को सिर्फ गाया नहीं, उनको अमर बनाया है। आइए दोस्तों, उन आवाजों के धुरंधरों के नाम अगला गीत फिल्म सिलसिला से, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत है देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ओनली ऑन अरुण FM 106.9 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

वहम गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

और दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ समाप्त करना होगा हमारा ये कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। आई होप कि आप सबने इस शो में बजे सारे सॉन्ग्स काफी ज्यादा एंजॉय किए हैं। और दोस्तों, सच कहूं तो हिंदी क्लासिक सॉन्ग सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक टाइम मशीन है। ये हमें हमारे बचपन में, हमारी पहली मोहब्बत में और उन पुरानी गलियों में ले जाते हैं जहां हम सब बड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अंत में एक और खूबसूरत शायरी आप सबके लिए। नए दौर के नए संगीत में वो बात कहाँ जो सुकून देता है पुराने गानों का हर एक लफ्ज़ यहाँ। ये वो नगमे हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं होते, हर सुनहरे दौर की दास्ता है ये, कभी फाने नहीं होते। इसी के साथ दोस्तों समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब चलिए दोस्तों, हम आपको सुनाएंगे कुछ हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स और उसके बाद आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: Trump has said the United States has been in direct contact with Hezbollah as part of efforts to reduce tensions in Lebanon and the wider West Asia region. Speaking at the White House, Trump said progress has been made in discussions aimed at reducing violence in Lebanon. He made the remarks after being asked about reports that Hezbollah had rejected a U.S.-backed peace proposal. He said he had discussed the issue with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other regional leaders. India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup hockey tournament at Kakamigahara Hockey Stadium in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. India entered the last four after finishing second in Pool A with 9 points. India's Pragyananda Ramesh Babu remained in contention for the Norway Chess 2026 title after defeating world champion Gukesh Dhamaraju in round 9. The victory took Pragyananda to 15 points, just half a point behind leader Wesley, who has 15.5 points after beating Magnus Carlsen. India Meteorological Department has said conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,804 rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की

0: प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोकली है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे हिट्स ऑफ 90s।

नमस्कार श्रोता दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, वो कैसेट्स को पेंसिल से घुमाना और वॉकमैन में चुप चुप कर गाने सुनना, ना इंटरनेट की फिक्र थी ना नोटिफिकेशन का शोर, बस हर दिल में था मोहब्बत का एक अलग ही दौर। चलिए आज फिर उन्हीं यादों की गलियों में थोड़ा घूम आते हैं और 90s के उन हसीन लम्हों को एक बार फिर से जीते हैं। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों 90s का म्यूजिक सिर्फ एक एरा नहीं, एक पूरी फीलिंग थी। याद कीजिए वो जमाना जब नदीम सरावन और जतिन ललित की धुनों पर पूरा देश झूमता था। अलका याग्निक की मिठास, कुमार सानू की आसिकी, उदित नारायण का वो चुलबुलापन और सोनू निगम की रेंज। जब गोविंदा के गाने पर हम सब शादियों में नाचते थे और शाहरुख खान के गाने सुनकर पहली मोहब्बत का एहसास होता था। क्या दौर था वो भी। आज इसी पूरे एक आज इस कार्यक्रम में हम कोई कंप्यूटर जनरेटेड बीट्स नहीं बल्कि असली ढोलक, तबला और वायलिन्स का जादू सुनाएंगे। तो अगर आप भी है 90s के दीवाने तो हो जाइए तैयार, दिल की खिड़कियां खोल लीजिए क्योंकि हम हिट करने जा रहे हैं एक फ्लैशबैक बटन। शुरू करते हैं हिट्स ऑफ 90s का ये सुनहरा सफर एक सुपर रोमांटिक ट्रैक के साथ जो है फिल्म हम है राही प्यार से। ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz जहां होती है दिल से दिल की बात। दीजिए

दोस्तों 80s के लास्ट में बॉलीवुड में थोड़ा एक्शन का शोर ज्यादा बढ़ गया था। फिर आई साल 1990 में फिल्म आशिकी। नदीम सरावन के म्यूजिक ने पूरा पासा ही पलट दिया। छा गया दोलक, वायलेंस और फ्यूट्स। लोग धांसू एक्शन छोड़कर फिर से आशिकी में डूब गए। 90s वॉज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। कुमार सानू और अलका याग्निक की जोड़ी, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की, या फिर सोनू निगम और साधना सरगम, इनकी आवाजों में जो इनोसेंस थी वो आजकल के ऑटोट्यून जमाने में मिलना नामुमकिन है। और दोस्तों सिर्फ फिल्मी गाने नहीं, 90s में अलीसा चिन्ने, लकी अली और कॉलोनियल कजिन ने पॉप कल्चर का एक नया दौर शुरू किया था, जिसके दीवाने हम आज भी हैं। चलिए आइए दोस्तों, अगला गाना आप सुनेंगे राजा हिंदुस्तानी फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। ये गीत है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: Joker.
1: आइए श्रोता दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन गीत के साथ। तो कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात।
0: द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैपिटल ईटानगर हैज ऑब्जर्व्ड दैट इलीगल अर्थ कटिंग एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट एट मल्टीपल लोकेशंस without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं एक बेहतरीन शायरी के साथ। दोस्तों, बीते लम्हों की खुशबू हर गीत में समाई है। 90s के दिनों ने दिलों में ऐसी जगह बनाई है। सुनो तो लगता है जैसे कल की ही बात हो। हर लफ्ज में मोहब्बत और यादों की परछाई है। दोस्तों, अगला गीत उन सभी लवर्स के लिए है जिनका प्यार कभी कम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनते हैं आशा भोसले और बप्पी लहरी की आवाज में फ्रॉम द फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा। ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। लीजिए पैसे ये गीत, प्यार कभी कम नहीं करना।

चलिए दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। एंड आई होप कि इस शो में बजे सारे गाने आप सभी ने काफी ज्यादा एंजॉय किया है। आशा करता है कि आप भी उन्हीं यादों की गलियों में वापस चले गए।

0: ชมน้าคิงนำนารีในสตูดิโอเมจิกันมาว่าพาป้อยเนี่ยจะห้างไหนคำใดคำที่เขาตื่นไข่ไม่สุดยอดฮอ
1: तो श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे ताई कामती श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे जहां होती है दिल से दिल की बात और अब शुरू होगा वो शो जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है जी हां दोस्तों अब आप सुनेंगे द शो बॉलीवुड अपडेट्स

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजी ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, इस शो को शुरू करते हैं एक बेहतरीन शायरी के साथ। फिल्मों की नगरी है, सुनहरी इसकी रात है, हर दिन यहाँ एक नई शुरुआत है। कई पर्दे गिरेंगे, कई पर्दे उठेंगे, क्योंकि हर कहानी में छुपी कोई बात है। जी हाँ दोस्तों, आइए, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स में, जहाँ हम लेकर आते हैं आप सबके लिए बॉलीवुड की दुनिया से कुछ बेहतरीन गर्मा गर्म मसालेदार ताजा तरीन खबर, जो आपका मूड बिल्कुल ब्लॉकबस्टर बना देगी। तो आइए शुरू करते हैं ये शो।

सुनो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस पर आई उस आंधी की जिसने थिएटर्स में आग लगा दी है। रामचरण और जानवी कपूर की फिल्म पैडी कल ही बड़े पर्दे पर आई है और बॉस देवन पर ही इसने वर्ल्ड वाइड 135 करोड़ प्लस का दासू कलेक्शन करके इतिहास रच दिया है।

और दोस्तों दूसरी तरफ रणवीर सिंह की धुरंधर टू द रिवेंज ने सिनेमा में 78 देश का अपना एपिक थिएट्रिकल रन खत्म किया है। 1149 करोड़ के हैरतअंगेज डोमेस्टिक कलेक्शन के बाद, पर अगर आपने इसे बड़े पर्दे पर मिस कर दिया तो रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका रो एंड अनदेखा यानी अनरेटेड कट कल ही जियो हॉटस्टार पर लाइव हो चुका है।

चलिए दोस्तों अब थोड़ा बात करते हैं फिल्मी चर्चा का। वरुण धवन की नई फिल्म हे जवानी तो इश्क होना है कल ही रिलीज हुई है पर मिक्स रिव्यूज के बीच फंसी हुई है। और इधर ललित मोदी ने लंदन से एक बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि रणवीर सिंह उनकी बायोपिक बनाना चाहते हैं और उनसे मिलने लंदन भी गए थे। इमेजिन रणवीर एज ललित मोदी। बॉस स्क्रीन पर तो धम्मा का पक्का है।

और दोस्तों हमारे ग्रीक गोद यानी ऋतिक रोशन ने एक इंटरव्यू में थोड़ा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जैसे रोल्स चाहिए डायरेक्टर उन्हें वैसे रोल्स ऑफर नहीं कर रहे हैं, सब उन्हें हमेशा गुड गाय के रूप में ही देखना चाहते हैं। डायरेक्टर्स हमारे क्रिस को कुछ खतरनाक ग्रे सेनेट रोल दो यार।

दोस्तों ये थी आज की सबसे ताजा तरीन और मसालेदार खबरें बॉलीवुड की दुनिया से। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में एक बेहतरीन गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फ्रॉम द फिल्म जब हैरी मेट सेजल। ये गीत है हवाएं, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: चलिए दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों आप सुनेंगे वांछू श्रोताओं का समाचार, और उसके तुरंत बाद हमारा फिर से शुरू होगा संगीत में सफर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि यहां होती है दिल से दिल की बात।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि जूनले मजे आका तारीख शुक्रवार इपोहासों आजमबाजी पुनी मिनट मुखिम केम वांचो साइका पां कपई पोवा कहवा पाई फाले वांका वांसुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप योगा पांतु सो तो हाई के एथलेट्स थम अंग होम हया योगा तु सो महाकंतोले मामा देश तो चाट क्या मा आयुष मिनिस्ट्री अंग क्या योगा 365 कैंपेन ग्लोबल एम्बेसडर अंग अचंगल बखई ओल बनले बो महाजा वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप तु सो मा हक पूजम तकु यो मामा मो देश तो खंग हाई क्या मिहक हो आली तकु यो योगा कंपिटिटर्स थम हकले तैले। मिस्टर मोदी ए हजक्का अहमदाबाद होनोई मा आसो अफो गया या वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप तू सो होकादप तू सो मन क्या जंगवन का जिम्मा बन ले बोमा आयुष मिनिस्ट्री थम हया योगा 365 कैंपेन खनक नु सामय वन मई हनपक मा अंग योगा चावानु तो योता निफो होम खोसत होलम अंग यो आचंग ले अपुक असात अंग क्या जूत जीले सो क्या चंग तेले बो महाजा वर्ल्ड योगा सन चैंपियनशिप तु सो मनी मखंग हो वंग वंग क्या इजे दे नि आचे तारिक कप ले असो अपो ऐ चंग तेले। अनि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे नि चंग ले बो मा चावानु मा क्या होजन सली यो सेसन ले थम अंके मोंगटेकन सुंग अचन आदन पुकु मख्या यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम अंके ता मोजु सेन मा हया नि जांगफो ले जून ले नि आगा तारिक अनि फंगा सों ले बंगले हया बामा अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए चुता सोशल मीडिया पोस्ट का हो मा हया नि मन मा हो क्या का हो मा खनक नु अंग मामा मोंग मा केम Powerling Shumoti Pomajenya Hiya Natural Resources for Session Ako Akam Le Dana Tham Ankya Mong Teken Sung Tham Ane Azan Le Yo Azak Azong Le Bakhayo Le Van Le Azan Le Zingi Jau Kya Income Tax Act 2025 Van Lam Ba Ma Khanak Nu Ang Apono Le Ko Ang Desh Ma Pang Nui To Yo Song Nui Te Kya Awareness Campaign Ankya Ta Tu So प्रारंभ 2026 मथो मखंगे ईटानगर मचु मनी दोनी पोलो इंटरनेशनल होटल मा अंगोत असोले बो महाजा तु सो टैक्स पेयर्स या स्टेक होल्डर्स थम अंग देस टैक्स वनलम ता होचुन होलान वनलम अंग जिंगे जौले आचंग पुकु मजिंग के हजा इनकम टैक्स एक्ट 2025 वनलम बा मा अपो नोलको अंग आसो अपो क्या चांगले काहुमा आजंग बाजा कैंपेन टू सो तो चीफ गेस्ट अंग गुवाहाटी इनकम टैक्स प्रिंसिपल कमिश्नर देबा कुमार सोनोवाल हैले बोमा मामो खटखा क्या मी अंग डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्कल गुवाहाटी दीप जॉय दास बोमा ईटानगर आकाशवाणी है दूरदर्शन रीजनल न्यूज यूनिट होठम अखो क्या मी उत्सव

तो श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे वंचो श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आइए शुरू करते हैं हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से।

चलिए दोस्तों, अब आप सुनेंगे इधर मिश्री श्रोताओं के समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम फिर मिलेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ।

तो सुन रहे थे इधर इसमें श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, आप फिर से मिल गए हमारे संगीत में सफर पे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं बेहतरीन गीत के साथ, कहीं तो फ्रॉम द फिल्म जाने तू या जाने ना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसके बाद आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। और अब स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:17, यानी मेरे अलविदा कहने का वक्त। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाली है आप सबके चहेते आरजे नीलम थापा, जो बने रहेंगी आप सबके साथ हमारी तीसरी प्रसारण सभा में। और दोस्तों आई होप कि आप सबने उतना ही एंजॉय किया जितना मैंने आप सबके साथ। सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इसी के साथ जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक एल ताली, और उसके साथ इंजीनियर ऑन ड्यूटी पे थे के नंद कुमार। तो दोस्तों अब मुझे यानी आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार।

0: के नशाब की करारी चाय लबों से यूं।
1: इरो आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचूसा दुबारा मंगा जुनजलिंग रंग मंगा तारीख आरो रंगजा बलई बजी खु मिनट थोड़ोजाम सो तंगसा प्रोग्राम तफंगाई रुनारु कोहांग मासिम केंगलांग रो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रो वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप नंग तोंथोक तो एथलेट सिंह नाउ पन मामा मुंग नंग सो कबीर जु आयुष मिनिस्ट्री योगा 365 चैंपियनशिप वंग ग्लोबल एम्बेसडर कजांग मरु तो अहमदाबाद नंग पर चैंपियनशिप ओपनिंग सेरेमनी नंग मसो फन रो अपांग पम योगा नंग कछु म अरो परम मई कम्युनिटी ताम तुंग नंग हेल्थियर लाइफस्टाइल तगयांग मो आयुष मिनिस्ट्री र योगा 365 चैंपियनशिप प तगयांग तंगु मोराउ प्राइम मिनिस्टर मोदी र फानथ आरो चैंपियनशिप जम योगा कमुंग नंगमन अवेयरनेस थ्रन्यान मो प्राइम मिनिस्टर मोदी र वर्ल्ड वंग एथलेट्स हेंग मरु थ अहमदाबाद नंग अफांगलाक पर वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप प तगयांग थ आरो पर इवेंट तगयांग तनांग करोक्सई मुंग ताम बंग रचा बलेशियन कॉम्पिटिटर्स हेंग पर तोंग थोक तो आरो पर इवेंट पर मचो जलिंग रंग बले तारीख म रंग मचे तारीख तक तगयांग सिमो रोक तो मचो सा मुंग कांग नंग वर्ल्ड नंग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सकान पर सरेंग रो आर्ट्स नंग लाइफ पर वोंग कांग म यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम मा म वरंग पांग जुन जलिंग रंग बंगा तारीख सा नंग मचूसाई रो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सकान पर सरिंग रो पर ओकेजन नंग चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू रो जुंगजात खम्बा जुंगजात गाम नई नेचुरल रिसोर्सेस पर वोंकांग मकाउ नंग महिंग मरु उत सोशल मीडिया पोस्ट कुत नंग अचा पा हेल्थी एनवायरमेंट तगयांग रो नेहई म वांगची जेनरेशन म अहु कजांग सिंगो फान्त अन्या मन्त इनकम टैक्स एक्ट 2025 कमुंग नंग मुंगपम नंग नेशन वाइड कैंपेन तगयांग रो नंग परामर्श 2026 अंडर म मने ईटानगर नंग डोनीपोलो इंटरनेशनल होटल नंग पर कैंपेन पर अहु म तगयांग तंगु रु त पर जो नेशनल टैक्स रेजिम तछो म लाम त पर जो टैक्स पेयर नै स्टेक होल्डर हेंग म थलंगकु म पर प्रोग्राम पर तगयांग तंगु रु त अरो पर जो गुवाहाटी वंग प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स देवा कुमार सनवाल पर चीफ गेस्ट म तोंग थोक त पर म बलांग डिग्निटरीज मे हेंग मन तोंग थोक त नंग गुवाहाटी वंग इनकम टैक्स सर्किल वंग डिप्टी कमिश्नर अरो आकाशवाणी ने दूरदर्शन ईटानगर वंग रीजनल न्यूज यूनिट वंग हेडमन पर कैंपेन नंग तोंथोकतुंगुरु द अरुणाचल प्रदेश वंग वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर दासांगु पुल र मनै अंजाव डिस्ट्रिक्ट नंग ऑफिशियल टूरिज्म वेबसाइट पर खेप द फंग तंगुरु द परजु महेंग कथुंग तनांग मसो फान तनांग टूरिज्म पोर्टल म अंजाव वंग असम नहु हा ताम पर प्रमो कल्चरल हेरिटेज पर तखोय रुक्षिंग फंड अराउ पर इनिशिएटिव लाम तो पर डिस्ट्रिक्ट नंग डेवलपमेंट कजांग मो क्रुमची टूरिज्म काउ अमाय कजांग सी मो फंड अराउ

अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तांगसा श्रोताओं के पूरे कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: हमारे प्यारे श्रोता मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस तीसरी प्रसारण सभा के साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। जी हां श्रोता मित्रों, दूसरी प्रसारण सभा में आपके साथ बने हुए थे आपका चहिता आरजे नानास। आरजे नानास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन प्रसारण और मेरे परिचय के लिए। श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:28 हो रहे हैं। तो चले इसी के साथ ही इस प्रसारण सभा का आरंभ करते हैं और पेश करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

समय रहते अपनी गलतियों को सुधारना और पर्यावरण की रक्षा करना सभी का परम कर्तव्य है। जी हाँ श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करने का एक वैश्विक अभियान है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और प्लास्टिक कचरे जैसी चुनौतियों के बीच इस दिवस का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। आज ये दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणीय अभियानों में से एक बन चुका है, जिसमें 150 से अधिक देशों के लोग भाग लेते हैं। श्रोता मित्रों, पर्यावरण दिवस पर हम आगे और भी करेंगे महत्वपूर्ण बातें। फिलहाल अब वक्त है इस गीत का।

श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं रेड एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात, और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का। और आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। श्रोता मित्र, हर साल एक नई थीम और मेजबान देश के साथ ये दिवस मनाया जाता है, ताकि किसी विशेष पर्यावरणीय समस्या पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किया जा सके। साल 2026 यानी कि इस साल में भी विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ मनाया जा रहा है। इस बार का फोकस प्लास्टिक प्रदूषण जैसे गंभीर समस्या पर है, जो समुद्रों, नदियों, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य तक को प्रभावित कर रही है। श्रोता मित्रों, इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कदम उठाना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी अजरबैजान देश कर रहा है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1972 में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद हुई, और पहली जी हां पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था।

श्रोता मित्र, अब सवाल ये है कि हम या आप पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे कदम उठाकर हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं और पर्यावरण की संरक्षणा कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, पानी और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, कचरे को अलग अलग करके रिसाइकलिंग को बढ़ावा दे सकते हैं और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों में भाग ले सकते हैं। तो चलिए श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये आखिरी गीत।

श्रोता दोस्तों, केदारनाथ फिल्म से आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये आखिरी गीत। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य की विकास यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अभूतपूर्व विकास और निवेश का साक्षी बन रहा है। देशव्यापी खेती बचाओ अभियान के तहत अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के कृषि विभाग द्वारा एक माह लंबे जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिविर खनल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशियाई कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा किया। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज सहित कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पनी और कदमत द्वीपों पर बहुदृश्य जेट्टियां का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य के विकास यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सड़क, हवाई अड्डों, पर्यटन, स्टार्टअप, कृषि और जल विद्युत जैसे क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश अभूतपूर्व विकास और निवेश का साक्षी बन रहा है। जो राज्य कभी सीमांत क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, वो आज पूर्वोत्तर के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। एनईसी के पूर्ण अधिवेशन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और नीति निर्माताओं सहित अनेक विशिष्ट नेताओं ने भाग लिया। देशव्यापी खेती बचाओ अभियान के तहत पापुमपारे जिले के कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, सतत कृषि, जलवायु अनुकूलन क्षमता तथा सूखा प्रबंधन पर केंद्रित एक माह लंबे जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में जिले भर के किसानों, कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों ने भाग लिया। इसी प्रकार राज्य के तवांग जिला उपायुक्त प्रभारी रिंचन लेता ने भी तवांग में उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में जिला स्तरीय खेती बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह राष्ट्रव्यापी अभियान केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि किसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है।
द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रेपो दर को तत्स्य रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्व अनुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की है। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूकता करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुड़ा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरण योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ईपीसीएच नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि यह पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:07 हो रहे हैं। जी हाँ श्रोता मित्र, इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है अब हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे इस खूबसूरत गीत का, कपूर एंड सन्स फिल्म से अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का, और इसी के साथ ही चले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं चांद मेरा दिल फिल्म से, ये बेहद ही खूबसूरत गीत है।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म चांद मेरा दिल से ये गीत, जिसे आवाज दी है राघव, चेतन्या और जोनिता ने। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जी हाँ, आज है जी हाँ फ्राइडे, और जिस दिन सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज होती हैं, तो आपको बता दें कि डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी जी हाँ फिल्म है जवानी, तो इश्क होना है रिलीज हो चुकी है, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेकड़े लीड रोल में है। तो श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि इसका रिव्यू खास नहीं है, जी हाँ मिला जुला सा है। तो खासकर अब हम आपको सुनवा रहे हैं इसे फिल्म का गीत।

0: सत्संगी
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। जी हाँ श्रोता मित्रों, तेलुगु इंडस्ट्री के मेगा पावर स्टार रामचरण अपनी नई फिल्म पैदी लेकर आ चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत भी की। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें खेलकूद के साथ साथ इमोशन का दमदार तड़का लगाया गया है। जी हाँ, इसमें जाह्नवी कपूर और दिव्येंदु शर्मा भी हैं। आपको बता दें कि रिव्यू की बात करें तो पैसा वसूल फिल्म है, बस देखते समय थोड़ी लंबी लग सकते हैं, बाकी पैसा वसूल फिल्म है। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का बेहद ही लोकप्रिय गीत

2012 में आई सुपरहिट फिल्म कॉकटेल का ये सीक्वल फिल्म है जो कि 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और आपको बता दें कि ये गीत गाया है अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, एक बार फिर से आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ श्रोता मित्र, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:31 हो रहे हैं और इसके साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम शाम की महफिल। कार्यक्रम शाम की महफिल में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। और हाँ दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही बेहतरीन चुनिंदे नगमे। उम्मीद है आप सभी कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत गीत दीवाना फिल्म से।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे ये सैयारा फिल्म का बेहद ही लोकप्रिय गीत विशाल मिश्रा और हंसिका पारी की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का। उम्मीद है कार्यक्रम में सुनवाए जा रहे

सुनवाई जा रहेगी, तो कहाँ आप सभी आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं अगला गीत हक फिल्म से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बेहद ही खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म से। जी हाँ, इस खूबसूरत गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और अपने खूबसूरत, जी हाँ, आवाज से सजाया है राशिद खान ने। श्रोता मित्रों, इस खूबसूरत गीत के बाद लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल का ये आखिरी गीत, जी हां, धुरंधर फिल्म से।

श्रोता मित्रों, शाम के महफिल कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे धुरंधर फिल्म से, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और अरमान खान ने। तो इस खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल का ये अंक, जी हाँ, यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि कुछ ही पलों में, यानी कि 6 बजते ही आप सुन पाएंगे, जी हाँ, हमारा विशेष कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर के ज्वाइंट स्पेशल प्रोग्राम व्हाट्सअप अरुणाचल में। जून का पहला हफ्ता यानी वो समय जब पूरी दुनिया जुट जाती है सिर्फ एक संकल्प याद दिलाने में, वो संकल्प जिसके सेंटर पे है पर्यावरण, उसका वर्तमान स्थिति और संरक्षण। पूरे देश और दुनिया की तरह अरुणाचल भी इस संकल्प के साथ खड़ा है। अरुणाचल भारत का वो राज्य जिसका 80% लैंड एरिया आज भी फॉरेस्ट है। प्रकृति के गोद में बैठा अरुणाचल, जो अपने सूदिंग टेम्परेचर्स, हरियाली और बेहिसाब बारिश के लिए जाना जाता था, आज क्लाइमेट क्राइसिस की फ्रंट लाइन पर खड़ा है। इसीलिए आज हमारा शो का मकसद बेहद साफ है, एक क्लीनर और ग्रीनर अरुणाचल के लिए प्रकृति के ब्लूप्रिंट को समझना। और वो क्यों जरूरी है वो समझने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट।
1: अरुणाचल की खूबसूरती इसकी हरियाली और साफ हवा में है। लेकिन बढ़ते अर्बनाइजेशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी नदियाँ और जंगल अब खतरे में हैं। क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ के सेंसिटिव इकोसिस्टम पर साफ दिखने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में अरुणाचल का एनुअल मीन टेम्परेचर नॉर्मल से 0.68 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। डे टाइम हाइट 0.75 डिग्री और रातें 0.61 डिग्री ज्यादा गर्म हो रही हैं। पासीघाट जैसे शहरों में प्री समर टेम्परेचर 32.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ हर डिकेड में लगभग 317 मिलीमीटर बारिश कम हो रही है। पिछले साल यानी 2025 में अरुणाचल में नॉर्मल से सिर्फ 80% मॉनसून की बारिश हुई। इस बदलाव का नतीजा है एक्सट्रीम रेनफॉल, तबाह करने वाले लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स। अरुणाचल की इंडिजिनस कम्युनिटीज, जो हमेशा से नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रहती आई हैं, उनका लाइवलीहुड अब खतरे में है। इन्हें अब बदलते मौसम से लड़ने के लिए सही क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस की सख्त जरूरत है।
0: जी हाँ, क्लाइमेट से जुड़ी सही इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस, इसी पे विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर लक्ष्मी लिंगी, हाइड्रोलॉजिस्ट, एंड ह्यूमलम बेंजामिन बीदा, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो में। तो मैम डॉक्टर लक्ष्मी, आई विल स्टार्ट द डिस्कशन विद यू। हमने हमारे इस रिपोर्ट में देखा दैट अरुणाचल में एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों हमारे हित के विपरीत तरीके से बदल रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड रेनफॉल शॉर्टेज ज्यादातर देखा गया है। 2024 और 2025 का मॉनसून सीजन जो है उसमें एवरेज रेनफॉल काफी कम रहा है। तो बीइंग अ हाइड्रोलॉजिस्ट एंड बीइंग एन एनवायरमेंट एक्सपर्ट, इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हमारे जीवन पे, अरुणाचल की जीवन शैली पे पड़ सकता है?
2: एज पर रिसर्च स्टडीज, जितना पेपर्स पब्लिश होते हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट के जो जितना फाइंडिंग्स है और आईएमडी के जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनका जो फाइंडिंग्स है, उससे जैसे आपने बताया वही पाया गया है कि रेनफॉल कम हो गया है लेकिन टेम्परेचर्स बढ़ गया है, लेकिन इंस्टेंसेस ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में रेनफॉल होता है। तो इससे होता, इससे प्रॉब्लम क्या है बताने से, इन टर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि देयर इज नॉट मच टाइम फॉर द वाटर टू परकोलेट इनटू द लैंड। तो जिससे पानी जो है मिट्टी के अगर अंदर नहीं जाते तो हमारा एक्विफर्स एंड ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज नहीं हो पाता है। तो पानी जो है फ्लो होकर के वेस्ट स्ट्रीम में चले जाते हैं, वो बह जाता है। तो इसीलिए तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आवर हिली स्टेट्स कैन फेस, जो पानी जो है रन ऑफ हो जाता है। रन ऑफ इज द टर्म जिसमें पानी परकोलेट, अगर देयर इज टाइम फॉर द वाटर टू यू नो स्टैंड ऑन द सॉइल, टू स्टे ऑन द सॉइल, देन देयर इज टाइम फॉर द वाटर टू गेट इन टू द डीपर लेवल ऑफ द सॉइल फॉर स्टोरेज पर्पज। बट सिंस ये रेनफॉल जो है कम ड्यूरेशन में हैवी होता है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टोर्ड इट्स गेटिंग रन ऑफ। सो दिस इज वन ऑफ द
0: एंड डज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द वाटर शॉर्टेज दैट वी ऑफन फेस इन आर हिली रीजन्स? इज दैट वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स?
2: या इट कुड बी वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स।
0: ओके, राइट, थैंक यू मैम। मैं बेंजामिन जी आपके पास आना चाहूंगा। ऑफ कैमरा यू आर टेलिंग मी अबाउट योर एक्सपेडिशंस इन जंगल, तो मैं शुरुआत उसी से करना चाहूंगा। अरुणाचल भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसका 80% लैंड एरिया इज स्टिल फॉरेस्ट। तो जाहिर सी बात है देर इज अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अरुणाचल एंड यू वुड डेफिनेटली अग्री टू दैट दैट बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अगर हमें आगे की जनरेशन को इस अर्थ को बचा के रखना है. तो ये जो राइजिंग टेम्परेचर्स है, डिफॉरेस्टेशन है, इससे बायोडाइवर्सिटी में आपके एक्सपीरियंस में क्या इफेक्ट आता है? लाइक हैव यू सीन कि जो पंछी ज्यादा दिखता था पहले वो कम हो रहा है, जानवरों की संख्या कम हो रही है? व्हाट सॉर्ट ऑफ इफेक्ट्स हैव यू सीन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन इन द फॉरेस्ट एंड जंगल्स ऑफ अरुणाचल?
3: ओके, फर्स्ट आई विल से कि यस, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ लाइक पार्ट ऑफ दूरदर्शन एंड ऑल्सो I personally am very blessed to be born in Arunachal Pradesh because we have a very rich biodiversity and also endemism. Endemic species hum log ka bahut zyada hai. I won't say about the entire flora fauna, but I'll speak particularly of a species that I've been working for the past 6 years, which is called the white-bellied heron. It's endemic species of Southeast Asia. And in the entire country, it's found only in Arunachal Pradesh. It's in a critical state. It's a very critically endangered species. And also, it only lives pristine habitats. So saying about the say global warming and also rise in temperature, what we have found out was due to the say increase in temperature, the species, the habitat that they're living, there are very specific habitats that the species needs, and it's found in the eastern Arunachal Pradesh only. But with the rise in temperature, their habitats are shrinking. So it's leading to them being endangered more. So if we say about these numbers, it's just mere, 6 to 9 individuals in our country.
0: Just six to nine
3: in our country.
0: And all of them are in Arunachal.
3: All of them are in Arunachal Pradesh. Okay. And the world population is just 50 individuals. So such rare species is there in our country, in our state. And with the global warming, their habits are shrinking. So you were saying about the rise in mean temperature, small number, we might say, just 1%, but it's throughout the year, the mean temperature. And because of this, the habitats, the small habitats they have already confined to, it's already shrinking. And if this continues, maybe the species might go extinct in the very near.
0: इसी पे बेंजामिन, मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछूंगा. हम बहुत बार ये सुनते हैं कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इनको हमें बचाने की जरूरत है. आम आदमी या मान लीजिए एक बच्चा अरुणाचल का ये प्रोग्राम आज जो देख रहा है, उसके मन में ये सवाल आ सकता है कि एक बर्ड जो सिर्फ 8-9 है दुनिया में, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया तो उससे हमें क्या? अगर एक जानवर है वो एंडेंजर्ड है, वो कल को नहीं बचा तो उससे हमें क्या? सो जस्ट हाईलाइट टू द व्यूअर्स एंड टू द फ्यूचर जनरेशन दैट हाउ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इकोसिस्टम विच शुड बी डाइवर्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट. क्यों एक व्हाइट बेलिड हेरन को हमें बचाने की जरूरत है?
3: एक्चुअली ऐसा है कि सो व्हेन वी सी अबाउट द स्पीसीज, तो इट्स एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड इन द एनवायरमेंट. आप अगर उससे एक छोटा सा चीज भी निकाल दें तो आप डिस्टर्ब करते हो. एंड इफ यू से अबाउट व्हाइट बेलिड हेरन, वो एक ऐसे स्पीसीज है, इट ओनली रिक्वायर्स क्लीन वाटर. अगर वो स्पीसीज उधर वो एरिया से अगर निकल गया एंड इफ इट डाइज ऑफ, दैट मीन्स कि वो एरिया जो ऑलरेडी द रिवर इज पोल्यूटेड, तो रिवर में पोल्यूशन ज्यादा है एंड देन ऑल्सो देयर्स लॉट ऑफ ह्यूमन डिस्टर्बेंस है. तो ऐसे नहीं है कि वी वॉन्ट टू लाइक एक स्पीसीज है वी वॉन्ट टू सेव इट. But while saving that particular species, we're just not just saving the species, but we're saving the entire ecosystem that is living there. And that is the fresh water and also the fishes that thrives there.
0: Right.
3: So that is also very important, because if we want to survive,

0: So from a scientific perspective, as a community, you know, community member, what we can do is there are certain, you know, examples that through various projects that the government does, that we get to know that these are the ways that the water can be conserved. For example, building of trenches and right. check dams. What is done in that process is water is stored. The running water through the hills, the springs, when they are running off, instead of running off, they are let to, you know, stay for some time through storage, through the check dams that stops its flow, and through building of trenches and through building of conservation ponds, the catchment areas and all. So that way, you know, what happens is the water is recharged, the natural springs, not just the groundwater, but the aquifers that are sources of these spring waters. So indeed, in that way, if we preserve it, the water that is coming through the springs, they are obviously pristine that we already know that are not polluted because they are coming from the ground. So if we take up these measures that the government have already set examples through various projects across the state. So we learn it, and it is up to the community to carry on those activities and do it on our own, in our own, you know, capacity. So that way, I think the public can take up such measures to conserve water.
1: Right. Dr. Lakshmi mentioned to us about government initiatives and also certain things that we as individuals should also undertake. इसी नोट पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के इस बजट में काफी सारे महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया था. उसी पे क्या क्या है एनवायरमेंट के लिए उसको जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट.
2: अरुणाचल प्रदेश के डिप्यूटी सीएम चाउना मैन ने स्टेट बजट 2026 से 27 में पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के लिए एक ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट पेश किया है. क्लाइमेट चेंज से लड़ने और स्टेट की बायोडिवर्सिटी को बचाने के लिए सरकार ने निदाग डानी और लेपोह मोदी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज तथा ब्राइडुआ और टुकपेन कम्युनिटी रिजर्व्स समेत चार नए प्रोटेक्टेड एरियाज का ऐलान किया है. साथ ही वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की निगरानी के लिए जीआईएस मैपिंग, कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स जैसे मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा. वर्ष 2026 से 27 में पाके, नमदाफा और कमलांग टाइगर रिजर्व्स के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी और बर्ड तथा बटरफ्लाई फेस्टिवल्स को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार के ऑफिशियल कैलेंडर इवेंट्स में शामिल किया गया है. वहीं अरुणाचल के नेटिव प्लांट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए 5 ईयर मिशन ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लॉन्च किया जाएगा तथा कैंपा फंड्स के माध्यम से विलेज लेवल पर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में लोकल कम्युनिटीज को सीधे जोड़ा जाएगा.
1: जी बेंजामिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा. सिंस यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द फॉरेस्ट एंड इन द जंगल्स एंड अरुणाचल इज अ प्लेस विच इज यू नो डेंसली फॉरेस्टेड, इतना ज्यादा घना जंगल पाया जाता है. बायोडायवर्सिटी के बारे में हमने बात किया, तो ये जो सरकार की नई योजनाएं है ऑफ सेटिंग अप न्यू स्पेशल टाइगर फोर्स, इम्प्लीमेंटिंग फेस्टिवल्स लाइक बटरफ्लाई फेस्टिवल, देर आर बटरफ्लाई पार्क विच हैव बीन स्टार्टेड इन पाके, इन जीरो, तो ये फ्रॉम एन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ये इको टूरिज्म या आपने जो बताया बायोडायवर्सिटी बढ़ाने के लिए ये सरकार की योजनाएं कितना हेल्पफुल हो सकता है फ्रॉम एन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपको लगता है?
3: सो हैविंग बटरफ्लाई से फेस्टिवल्स एंड ऑल इट एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट विद जीरो, कमलंग एंड ऑल्सो नामदफा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन व्हाट हैपेंस इज यू हैव कम्युनिटी एंगेजमेंट both with the forest department, with the community, and also the experts that come across from across the countries and also from outside countries also. They come together, share their knowledge. And in recent years, what happened in Namdafa, where they did with Namdafa butterfly meet, usually they conduct it inside the park, but this time the forest department of the Namdafa Park authorities did it outside the park and with the communities. So what happens is then you have the engagement of the communities. Once you have the engagement of the communities, you can push forward for conservations. So when we say about conservations, we always say okay, research on hai, on hai. But that's not the truth. Agar conservation mein agar aap community ko aage nahi leke aate, if you cannot give them stewardship, like ownership need data, then there's no point of having the conservation, right. Having a conservation. So at the end of the day, jo community aapka protected area ho, non-protected area ho,

0: my only focusing on jungle when I'm asking you. It's just because you have such a diverse experience of spending so much time amidst the jungles that and Arunachal ke context mein jungle and forest life and biodiversity and making sure that community is a part of that is very important. So ye jo ग्रोइंग टाइम्स है चेंजिंग टाइम्स है इन टर्म्स ये मान लीजिए आज का एक कोई क्लास 10 में पढ़ रहा हुआ बच्चा ये प्रोग्राम हमारा देख रहा है ही स्टेज इन एन अर्बन एरिया ऑफ अरुणाचल ही डजेंट वॉन्ट टू गो टू द जंगल तो उस तक हम ये बात कैसे पहुंचाए दैट जंगल में सिर्फ रह के नहीं उसके बाहर रह के भी जंगल के बारे में जान के बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान के यू कैन लीव एन इम्पैक्ट सो हाउ कैन द यूथ be driven to the culture of Arunachal, to the forests of Arunachal and make sure that they learn and they are aware ki jungle and biodiversity is equally important like an infrastructure or a building.
1: Okay. So, talking about that, pehle bhi bola hai, Arunachal is very, like we have a lot of biodiversity and the endemism zyada hai. And abhi ka youth, like when we should talk about youth, कोई कोई मेनी मेनी मेनी यूथ दे डोंट गो लाइक गो ट्रैकिंग उसके बाद आपका जंगल में घूमना नहीं चाहता बिकॉज दे फियर जो जू है लीचे से थोड़ा डरता है उसमें बट वंस यू गो इन टू द फॉरेस्ट और जाने तो वक्त नहीं होता है यू गेट दैट काम फीलिंग और जहाँ लाइक पीपल टेंड्स टू गो लाइक बार बार में मेडिटेशन करता है यू आर पार्ट ऑफ दैट एनवायरमेंट इटसेल्फ आपको दूर जाना नहीं अरुणाचल में ऐसे जगह है कि आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा आप घर से थोड़ा कदम निकालो एंड देन यू गेट दैट एनवायरमेंट इटसेल्फ ना एंड कंजर्वेशन का आगे डालने से जैस हम लोग कभी कभी सोचते हैं यू हैव टू बी इन द फील्ड टू स्टार्ट द कंजर्वेशन एफर्ट्स बोल के but that's not so because conservation is not just driven by researchers or driven by aapka jo geology padhta hai botany padhta hai ya forestry padhta hai it's not that it's a multidisciplinary approach jo youth hai they can like say jo technologies mein acha hai they can develop technologies which will later help conservation तो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ऐसे नहीं है कि आप रिसर्च ही करते रहो आप जंगल जाते रहो टू बी पार्ट ऑफ दैट कंजर्वेशन एफर्ट ना तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई आप इंडिविजुअल्स भी होना चाहिए जो लाइक कैन गो मेनी मंथ्स इन साइड जंगल बट आपको ऐसे इंडिविजुअल्स भी चाहिए जो बाहर बैठ के भी दे कैन इम्पुट मोर जो जैसे कि जो टेक्नोलॉजीज का ऊपर जो अच्छा काम करते हैं दे कैन डेवलप दोस टेक्नोलॉजी सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जंगल अंदर में ही बैठे बट यस जब आप अंदर बैठोगे देन यू विल गेट दैट इमोशन कि मतलब व्हाई यू नीड टू कंजर्व इट एंड इन ग्रोइंग टाइम्स में अभी आपका डेवलपमेंटल ग्रोइंग टाइम्स में यू माइट नॉट सी लॉट ऑफ द इंडिविजुअल्स और लॉट ऑफ द स्पीसीज आप देखते देखते वो लोग दे माइट गेट एक्सटिंक्ट So why not just go and explore? And just explore and see to yourself ki kitna diverse hum log ka state hai.
0: Right, absolutely. Man. Biodiversity and ecotourism, which is very important, not just for sustainable, but also for growing diverse cultures and community. So, from a scientific perspective, जब आप लोग कोई नया technology develop करते हैं, and from the years of research that you put in, so what is the first primary thing that you concentrate on? Is it sustainable development or identification of a particular problem or finding solution to a particular problem? What is given more weightage when you select a particular project?
2: Like you said, it would be identification of problem and then going behind it, providing a solution towards it. For example, identification of problem in terms of seismic microzonation is also one of the field that our department is working on. So seismic microzonation, what happens is the entire India, different zones, it has been divided into different zones, seismic zones. But for a particular small town, we do not have different, zonation is not there for seismicity. Like how much a certain area in a state.

0: आयुष मिनिस्ट्री योगा 365 कैंपेन को इलन बतुंग इनाम चैंपियनशिप सो इकसुप अमला ना ना तकम तानी अमोंग से केनिन दोप इग बडोप पोलिग दो देलोग रोंगम करंग यालुम वॉल योगा सन्ना चैंपियनशिप इकसुप नमसिम अहमदाबाद इग बोला इंग अक्के गन्ना कंट्री लोग लिंको अपी गन्ना इकसुप नको पुलिग दो इक सुपर नाम सिम पोर जून लोग इलन ला ए जून लोप इलग ये तानी अमोंग तकम सो आसी अमोंग लोंग पे लोडुम नाम वॉल एनवायरमेंट डे एम सिलो तानी अमोंग तकम सो लोडुम तो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू कोम लोंग सोक अमिन पे दादी तकम आसी अमोंग अदिंग नाम लो अग मुलुक सुला तकम लको ला आसी अमोंग अर्दा नाम अगेर एम इबो सुदोप पोकान दो असी अमोंग कंपोला अदिंग ला ये नाम द ये तित पना लगा पे कम आइना बदंग एम मोगे बिना पे इडुंग एम लांग कम पोकान दो प्रारंभ 2026 आरंग लोग इंडिया तकम लगा पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 आयोन अन इलन बोनम तयो लो अवेयरनेस पे बो को मलो दोनी पोलो इंटरनेशनल होटल इटा नगर लो दूतो सिकना पे बो सिम टैक्स लगांग एम कांगे बोना देलो के टैक्स बिना तकम एकोम टैक्स अन आयोन सिम केंदो पे मिला दुबोतो पेबो सो टैक्स अन आयोन सो इलन नाम कार से तु लगांग एम कॉम आई रूप पोकान बोडो मलो के पेबो देलो इनकम टैक्स प्रिंसिपल कमिश्नर गुवाहाटी देबा कुमार सोनोवाल बे पोंडो बोते पे आला इनकम टैक्स सर्कुल डिप्टी कमिश्नर गुवाहाटी देवजय दास जॉइंट डायरेक्टर न्यूज देलो रीजनल न्यूज यूनिट हेड आकाशवाणी देलो दूरदर्शन ईटानगर उत्सव परमर बुलु कम दुमंत अंजाव डिस्ट्रिक्ट लो कांगोंग इगो पना लगा पे ऑफिशियल टूरिज्म वेबसाइट को मलो वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर देसांगलु पुल बु इगो बोतो मिनिस्टर बु पोकान दोने सिकना वेबसाइट इलन नाम सो अंजाव लो असी अमोंग कंपो एम लंकन ला डिस्ट्रिक्ट आरा लो टूरिज्म अतिंग एम कॉम करंग गुमो ला लोकल अमी लगा पकोम आईना अगेर अन्नम अंग बीए एम ला पोकान दो इगोक पेबो देलो डीसी मिगो मिलो कोजिन एसपी अनुराग बुबीदी जेटपीएम देलो के डिपार्टमेंट हेड तकम एकोम दुमन तो तन्नक डानोलुलु तत्सिम आकाशवाणी ईटानगर लोक तत्पादुंग डिस्ट्रिक्ट आरा लो पोरी अतिंग एम आया पे इग बोला करंग अमिन गिदोप मिला मेलो पापुम पारे डीसी मिगोम लोपसांग सिरिंग बु एजुकेशन डिपार्टमेंट एम कोऑर्डिनेशन मीटिंग को दुबोस सुतो मीटिंग देलो डीसी मिगोम बु एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ तकम एम पोरी अतिंग अगेर एम आई रूप इग कांगे बोडोप पोलिग दो देलो ग्रोंगम 2025-26 सेशन सीबीएसई AISSE examination law 100% pass Yindopa Ibona School Kudu Government Higher Secondary School Balijan Kimin Bandardeva Delok Kasturba Gandhi Bal Vidyalaya Sagali Kudu Lo Yinnam Aman Amkom Bilikto Arik Anam Ila Yena Kudu Bojepa Kusere Bayere Imapa Delok Ilik Duakom Kusereng Ipanam Dem Airupa Kenla Arik Anam Ainam Legal Lo इंडिया मोले तकम लगा पे कैंपेन इलन बोनम केट बसाओ अभियान कैंपेन पे वो एम पोलो को पे इबोम पनम लगा पे मेलो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ए इंगुन लंतो सिकना कैंपेन पे वो एम मेलो तवांग डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल लोकम डीसी इंसार्ज रिसिन लेता बु इगोग बोतो इंडिया तकम सो इबोम पनम कैंपेन सिम अरिक अनम असी अमोंग आइनम लगा पे एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्ट्री ए इलन बोतुंग सुप्रीम कोर्ट लोक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 इलन नाम सिम डिस्ट्रिक्ट अरा लो आयरू पे इबोम पनम लगा पे मलो पापुम पारे डीसी मिगोम लोपसंग सिरिंग बे करंग यालुम डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमिटी मीटिंग एम डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल यूपिया लो दुबोतो डीसी मिगोम बु रूल अन बिलन नाम सोक आइनाम लगांग एम पोकान डोला इलापना इंस्टीट्यूट तकम एकोम अगके रजिस्ट्रेशन एम सीपीसीबी पोर्टल लो जून 14 तेलो पे बीन सुलिक दोप पोलिक दो सातन्ना के दर सीयुम के अदिलुतत ए देबोंग तन्ना के दर सीयुम के अदिलुतत एम तारोंग लो सुपाग नोलो अदि मिरी पे बोलो
1: अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आदि श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स तथा DRM 666 किलोहर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

जी हाँ श्रोता मित्रों, चलिए हमारे अरुण एफएम के कार्यक्रमों को आगे जारी रखते हुए पेश करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्रों, बॉलीवुड में प्यार का पाठ पढ़ाने वाले, जी हाँ, फिल्म मेकर इम्तियाज अली आज के हमारे फनकार कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मेकर इम्तियाज अली आज के समय के सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं। वो पर्दे पर प्यार का फलसफा कहने में कामयाब रहे हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि इम्तियाज कभी निर्देशक नहीं बनना चाहते थे। जी हाँ, वो बचपन से ही एक्टिंग के सपने देखा करते थे और चोरी छिपे फिल्में भी देखने जाया करते थे। श्रोता मित्र, उनके बारे में होगी आगे बहुत सारी बातें, फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, तमाशा फिल्म से आप सुन रहे थे ये बेहद ही खूबसूरत मजेदार गीत। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे कलाकार हैं, जी हाँ, फिल्म मेकर, फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली। दोस्तों आपको बता दें कि इम्तियाज अली झारखंड के जमशेदपुर से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, उनका जन्म इसी महीने, जी हाँ, यानी कि 16 जून को सन 1971 को हुआ था। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इसके पीछे उनकी लगन और कड़ी मेहनत है। डायरेक्शन में आने से पहले इम्तियाज थिएटर किया करते थे। थिएटर ही वो हथियार है जिसने उनके करियर में जान फूका है। थिएटर की वजह से ही वो फिल्मी दुनिया में कदम रख पाए हैं, लेकिन उनकी चाह कभी फिल्में बनाने की नहीं थी, बल्कि वो तो एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इम्तियाज अली की माँ हाउस वाइफ थी, जबकि पिता सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। जमशेदपुर में जन्मे इम्तियाज बाद में पटना चले गए, वहां 8वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई जमशेदपुर में ही की। उनका परिवार सिनेमा के मामले में जरा सख्त रहा है। वो अपने फूफा के यहां रहते थे और उन्हें जरा भी पसंद नहीं था कि कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा टॉकीज में जाए। वहीं उनके घर से सटी एक थिएटर की दीवार भी थी, जिसे लांघने का काम इम्तियाज ने किया। घर की खिड़की से टॉकीज के पर्दे का छोटा सा हिस्सा दिखता था। यहीं से इम्तियाज चोरी छिपे फिल्में देखा करते हैं। तो श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ती हुई आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे। जी हाँ, हाईवे से आप सुन रहे थे ये बेहतरीन गीत ए आर रहमान की आवाज में। दोस्तों, पटना और जमशेदपुर के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इम्तियाज अली दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज पहुंचे। यहाँ उन्होंने थिएटर में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने नाटक लिखने और निर्देशन का काम संभाला। बाद में फिल्मों में काम करने का सपना पूरा करने के लिए वो मुंबई चले गए। जी हाँ, मुंबई में पहले वो गुजर बसर करने के लिए काम खोज रहे थे, तो इस दौरान फिल्म मेकिंग में असिस्टेंट का काम मिला तो किया। उन्होंने फिल्मों से पहले कुरुक्षेत्र और महाभारत जैसे सीरियल्स का निर्देशन भी किया है। आपको बता दें कि इम्तियाज अली ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में बतौर निर्देशक सोचा ना था से की थी। फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी, लेकिन बाद में काफी पसंद किया गया था। इसके बाद उन्होंने, जी हाँ, साल 2006 में आई अगली फिल्म आहिस्ता आहिस्ता बनाया। इसे भी खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि इम्तियाज अली की किस्मत साल 2007 में फिल्म जब वी मेट से बदली थी। इसके बाद रॉक स्टार हैरी मेट सेजल, हाईवे और लव आजकल जैसी फिल्में बनाई और खूब नाम कमाया। तो चलिए, इसी के साथ ही अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हैरी मेट सेजल से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आज के कलाकार में। जी हाँ दोस्तों, आपको फिर से एक बार बताते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली की। गौरतलब है कि इम्तियाज अली ने डायरेक्शन के अलावा एक्टिंग में भी किस्मत आजमाई है। वो पहली बार एक्टिंग करते हुए अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में नजर आए थे। इसमें उनका रोल याकूब मेनन का था। याकूब मेनन मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी टाइगर मेनन का छोटा भाई था। याकूब सरकारी गवाह बना था, लेकिन बाद में उन्हें फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी सच्चे और गहरे रोमांस की बात होती है तो इम्तियाज अली का नाम उन फिल्म मेकर्स की लिस्ट में आता है जो ऐसी ही फिल्में बनाते हैं। इम्तियाज अली की कहानियां सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं होती, बल्कि रिश्तों की गहराइयों को बयां करती है। उनकी फिल्मों ने एक पूरी जिहा पीढ़ी को सिखाया है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, बल्कि खुद को समझने का जरिया भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे बेहतरीन गीत मोहित चौहान की आवाज में। जी हाँ, रॉक स्टार फिल्म से। दोस्तों आपको बता दें कि इम्तियाज अली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मैं वापस आऊंगा को लेकर चर्चा में है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म में दलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और सरवरी नजर आएंगे और ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। जी हाँ, मैं वापस आऊंगा फिल्म से ही।

श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आप सुन रहे थे मैं वापस आऊंगा, फिल्म का एक बेहद ही खूबसूरत गीत जिसे आवाज दी है निलंजना घोष और वेदांग रैना ने। और इस फिल्म की शुभकामनाएं, जी हाँ, शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं फिल्म मेकर इम्तियाज अली को। तो दोस्तों, इसी के साथ ही इम्तियाज अली पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि निशी श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा डीआरएम 666 किलो हर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम सुन सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:08 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं कच्चे धागे फिल्म के गाने।

अरुण एफ एम 103.1 MHz पर आप आनंद ले रहे हैं कच्चे धागे फिल्म के खूबसूरत गीतों का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस गीत को आप सुन रहे थे अलका याग्निक और हंस राज हंस की आवाजों में। तो चलिए इसी के साथ ही इस फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोता मित्र, इस गीत को आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल आवाजों में। जी हाँ, आप आनंद ले रहे हैं कच्चे धागे फिल्म के गीतों का। जी हाँ श्रोता मित्र, फिलहाल हम ले रहे हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, आप सभी का हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्रों, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: श्रोता मित्र, कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। जी हाँ, आपको बताते कि आप आनंद ले रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम का। जी हाँ, जिसके तहत आपने जी हाँ हमने आपको सुनवाए कच्चे धागे फिल्म के गाने। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है और इसके साथ ही आपको बताते कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
2: आदरणीय श्री बागरा साहब, सादर सत्प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
1: प्रेम और प्यार भरा नमस्कार आपको भी और आकाशवाणी ईटानगर हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी हृदय से धन्यवाद। मनवर मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र
1: शारदा प्रसाद मथुरा से। शारदा प्रसाद जी, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कहिए क्या चल रहा है अभी?
2: मानवर बस आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है।
1: क्या
2: आप
1: बात
2: लोगों
1: है?
2: से वार्तालाप करना मेरा शौक है और मुझे काफी खुशी प्रसन्नता होती है जब आकाशवाणी ईटानगर में फोन लग जाता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी, आज भी फोन तो लग ही गया।
2: जी
1: जी, और मौसम का हाल कैसा है आपके वहाँ?
2: मानवर इस वक्त मथुरा वृंदावन में जबरदस्त गर्मी का वातावरण है, चिलचिलाती हुई चमचमाती हुई धूप रहती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं और पूरा मथुरा वृंदावन लू की चपेट में है।
1: ओहो, जी जी।
2: क्या है कि यहाँ पर तापमान लगभग 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दिन में हो जाता है और रात 30 डिग्री के आसपास रहता है।
1: जी जी जी, बाहर निकलना तो संभव ही नहीं हो पाता होगा तब तो।
2: जी, इस वक्त बाहर निकलना मतलब जान

0: जोखिम में डालने वाली बात है, बहुत ही खतरे
1: बिल्कुल
0: की घंटी है। लू का प्रकोप है, लू की चपेट में आने से स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: लू की चपेट में आने से ना तबीयत बहुत खराब हो जाती है,
1: जी
0: जिससे कि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इसलिए धूप से बचें, 11 बजे से लेके शाम को 4, 4:30, 5 बजे तक न निकले तो ज्यादा अच्छा है। उसके पश्चात अपना काम कर लें सुबह अथवा शाम को।
1: जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो इस पर जरूर अमल करेंगे, हम यही आशा करते हैं।
0: जी, यदि संभव नहीं हो, बहुत जरूरी काम हो, तो धूप में निकलने से पहले खूब पानी पी ले। पानी पीने के पश्चात ढीले ढाले कपड़े पहन ले, सूती कपड़े, और सिर को ढक ले, चाहे वो रुमाल से, चाहे टोपी से, या पगड़ी लगा ले, हेलमेट लगा ले। उसके बाद फिर घर से निकले और समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, जिससे कि हमें डिहाइड्रेशन नहीं हो। और घर लौटने के पश्चात शरीर का तापमान नॉर्मल होने के पश्चात ही कुछ खा पी के फिर पानी पिए, अन्यथा उसमें भी समस्या उत्पन्न हो सकती
1: जी
0: है।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब से गर्मी शुरू हुई है तब से आपने अपना यह विचार रखा है रेडियो पर, और हमें लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं जरूर इस पर अमल कर रहे हैं और अपने आप को लू से बचा रहे हैं।
0: जी।
1: तो शारदा प्रसाद जी, कहिए घर बैठे बैठे अब कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: बस इस गर्मी भरे वातावरण में यही सबसे कहना चाहता हूँ कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए,
1: ओहो
0: गाना आए ना आए गाना चाहिए।
1: जी जी जी जी वो
0: जी,
1: जी
0: फिल्म का पत्नी और तवायफ तो महेंद्र कपूर साहब।
1: और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
0: जी,
1: पति
0: खूबसूरत
1: पत्नी और
0: गीत आदमी बागरा साहब के साथ साथ में याद करना चाहता हूँ, सर्वश्री अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेन वर्मा, राजू यादव, राजू लवानिया, राकेश कुमार जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, नाथ जी, और साथ में अर्जुन प्रधान, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर से आर्य भागरा साहब के साथ सभी सम्मानित श्रोताओं को सर्व समर्पित करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद जी। तो आइए सुनते हैं आपके पसंद का गाना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
0: जी, बिल्कुल, धन्यवाद।
1: ओके।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी
1: नमस्कार सत श्री अकाल सलाम अलैकुम
0: जी
1: राधे राधे है
0: राधे राधे जी जी
1: ना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: और मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा दोस्त है
0: जी
1: जिसका नाम है बो के बागेरा जी
0: बहुत
1: है ना।
0: बहुत धन्यवाद। हाँ जी
1: मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर डिस्ट्रिक्ट
0: हाँ जी
1: है श्री भूमि असम से तालुका से है
0: आसाम से हमारे दोस्त अनूप कुमार भट्टाचार्य
1: जी।
0: जी जी जी हाँ
1: जिंदगी में मुसीबतें तमाम है फिर भी इस चेहरे पर मुस्कान है। जब जीना ही है हर हाल में तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान
0: वाह
1: है
0: वाह
1: ना।
0: वाह वाह वाह वाह बहुत ही अच्छी बात कही। मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। जी जी बिल्कुल सही कहा
1: जी
0: आपने
1: जी और
0: जी
1: बाकायदा क्या कहूँ, मतलब बाकायदा नहीं है एकदम, मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरा मन में एक सुकून भरे हुए थे हमारे
0: जी हाँ जी
1: दोस्त से
0: बातचीत जरूर होगी।
1: बातें हो जाए
0: हाँ जी हाँ जी
1: और भी बात हो रहा है
0: जी
1: ना
0: बिल्कुल बिल्कुल बातचीत हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: जी। तो
0: हाँ जी
1: हमारे वहाँ के मौसम के मिजाज तो थोड़ा
0: हाँ जी हाँ जी
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: नरमी नरम सी हो गए है, क्योंकि 2-3 रोज से बारिश हो रहा है। इतना बारिश जोरदार नहीं है, इतना
0: अच्छा
1: कम नहीं है, क्या
0: अच्छा अच्छा जी जी जी
1: बोलते हैं, ये बारिश टिप टिप टिप टिप करके बारिश हो रहा है। और मौसम भी थोड़ा बहुत क्या कहो, मतलब
0: सुहाना हो
1: ठंडा
0: गया
1: भी
0: है। सुहाना हो गया मौसम
1: और आपके वहाँ के मौसम भी वैसे
0: जी
1: ही
0: अनुपदा।
1: है
0: हमारे
1: ना
0: यहाँ पे भी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है
1: जी।
0: जी। तो ठंडा है अभी मौसम बहुत ही बढ़िया है।
1: जी।
0: हाँ जी
1: तो चलिए आज एक प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी
1: फिल्म का नाम है साजन का घर और गाने का बोल ऐसे है।
0: जी
1: अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ऐसे करके गाने हैं
0: जी खुशियों का पल जरूर आएगा अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे
1: जी।
0: जी।
1: और
0: हाँ
1: कुछ
0: जी
1: दोस्तों को मैं याद करता
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: बिल्कुल जी जी अनुपदा
1: पहले है हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे जिसका नाम बोके बागेरा जी
0: धन्यवाद जी।
1: और नूरी मैम के
0: हाँ जी
1: लिए,
0: हाँ जी नूरी मैम के
1: और
0: लिए भी
1: है नूरी मैम भी बहुत अच्छी है,
0: जी जी जी जी
1: और बसंतीलाल सूर्यवंशी जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, बापन आचार्य जी है, सिंधु दास जी है, और कश्मीर से हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे पुरुषोत्तम कुमार जी है, विजय सिंह लखेरा जी है, और सतीश भाई के लिए और मानवार भाई के लिए, अनवार भाई जी के लिए, ओम प्रकाश सिनेमा जी के लिए और श्रीकांत जोशी जी फ्रॉम महाराष्ट्र। तो दोस्त बातचीत को यही पे विराम देता हूँ। भाई हला भले
0: ओके
1: फिर
0: जी जी जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ बंधु।
0: बाहुबली जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आप जैसे बड़े बुजुर्ग जब हमसे बातें करते हैं और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है।
1: मुझसे दूर थे तुम, हम मिलना अच्छा लगा, सागर से गहरी लगी आपकी दोस्ती, ऐसा तो आता था मगर डूबना अच्छा लगा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी शायरी से आपने शुरुआत की आज की बातचीत को। जी आप कैसे हो बताइए।
1: माजी मैं तो मस्त हूँ, आनंद में हूँ, आपकी मंगल कामना और प्रभु की छत्र छाया में 84 साल के उम्र में मस्त और सुचारू रूप से जीवन यापन चल रहा है बंधु।
0: क्या बात है, क्या बात है बाहुबली जी, बहुत ही अच्छा लगा। आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे हमेशा, हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं। कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: तो एक फिल्म प्यासा का गीत जिसमें

0: जी
1: समाज में जो अपने बहने और माताओं की जो एक बोले तो बहुत ही नीचा दिखाने वाली परिस्थिति के ऊपर एक कवि ने बहुत ही अपने मार्मिक शब्दों में उसको उजागर किया है।
0: जी
1: कहा है ही जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहा है। ऐसी बोल है
0: जी
1: उसमें, और ये तो अपने पुराने शायर रहते तो
0: जी
1: उनके जज्बात और उनके अंदर के रूह से जो शब्द निकलते वाकई उसमें कुछ भी वजन रहता है भाई साहब।
0: जी जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो जरूर सुनाएंगे आपको इस गीत को, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे आप इस गीत को बाहुबली जी?
1: अरे भाई साहब, ये कार्यक्रम में
0: जी
1: मुझे प्रवेश करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बहुत ही प्रिय हितचिंतक मित्र
0: जी
1: लोकेंद्र जी वर्मा ने मुझे सूचित किया
0: अच्छा जी
1: और
0: जी जी
1: उनके निर्देशन में मैं प्रयत्न किया,
0: जी
1: और आप जैसे शून्य
0: बहुत बहुत
1: अनाउंसर से मेरी मुलाकात हुई और
0: जी
1: दो शब्दों का आदान प्रदान विचारों में,
0: जी जी जी
1: जो
0: जी
1: दोनों के विचारों में एक सूत्रता दिखी,
0: जी
1: उससे मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है बंधु।
0: जी जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद लोकेंद्र वर्मा साहब को भी करना चाहेंगे जिन्होंने आपको हमसे मिलवाया जी। तो
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं। नमस्कार
1: ओके सर,
0: जी।
2: कहाँ है मुहाफिज खुदी के जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है।

ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों के झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।

कलियां ये बिकते हुए खोखले रंग रलियां जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार नमस्कार। मैं असम से बात कर रहा हूँ, सुतपा भट्टाचार्य।
0: सुतापा दी, बहुत दिनों के बाद आपने कॉल किया।
1: बहुत दिन से ट्राई कर रहा है, लगता नहीं।
0: अच्छा, जी, आजकल बहुत ज़्यादा लोग कॉल करते हैं ना, इसीलिए थोड़ा बिजी
1: जी
0: रहता है लाइन। और कहिए आप कैसे हो?
1: हाँ, मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो?
0: हाँ मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और आपके वहाँ पे मौसम कैसा है?
1: मौसम तो सुहाना है।

0: सुहाना है
1: बारिश
0: बारिश।
1: बारिश हो रहा है। जी
0: ओके ओके बिष्टीपुर से।
1: जी जी
0: ओके ओके तो बोलेन आज के कौन फिल्म और गाना आपने सुनबेन?
1: गाना सुना दीजिए। फिल्म का नाम तो पता नहीं, गाने का बोले से है,
0: जी
1: दिल में आसमां आंसू में रह गए।
0: दिल के अरमा आंसुओं
1: जी
0: में
1: जी
0: बह
1: दिल के
0: गए।
1: अरमां आंसू में रह
0: जी
1: गए।
0: जी जी हाँ जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: पहले तो आपके लिए,
0: धन्यवाद।
1: नूरी मैडम के लिए,
0: ओके जी जी जी हाँ
1: कुसुम
0: जी।
1: जी के लिए,
0: ओके इन सब के साथ आप सुनना
1: अनुपमा
0: चाहेंगे?
1: भट्टाचार्य,
0: हाँ हाँ
1: प्रेमजीत चक्रवर्ती, बसंत लाल सूर्यवंशी, देवजीत दास, सतीश भाई, अमर सिंह साहू,
0: ओके
1: बपन आचार्य, सिंधु दास,
0: ओके
1: श्रीकांत जोशी।
0: अच्छा। पीछे से अनुपदा आपको बोल रहे हैं ना? अनुपदा का आवाज भी सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं। जी जी जी
1: जी
0: हाँ कभी कभी हम लोग को नाम याद नहीं रहता है ना। जी
1: हाँ
0: जी
1: थैंक
0: जी तो थैंक यू सो मच सुतापादी कॉल करने के लिए। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
0: हारून साहब हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे हैं सुनाइए।
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, और आपके इधर
0: जी
1: आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ही बढ़िया है, आपके वहाँ का क्या मिजाज है?
1: मौसम भैया कुछ गजब है, लू चल रही है, चल रही है, गर्मी पड़ रही है, उमस है खतरनाक।
0: जी जी जी जी, तो गर्मी से अपने को बचाए रखे, जब भी काम ना हो तो घर पर बैठे और हमारा कार्यक्रम सुने।
1: जी जी
0: जी, तो कहिए आज घर बैठे बैठे
1: मौसम, गर्मी के मौसम कैसा है आपके इधर?
0: हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार।
1: उमदा मौसम है, ठंडा मौसम है।
0: जी जी जी
1: जी, ताकि आपको हमारे इधर तो आज ही तूफान चढ़ गया।
0: अच्छा अच्छा,
1: तूफान चढ़ गई, बारिश भी हो गई, अभी 10-15 रोज पेड़ वगैरह गिर गए हैं।
0: ओहो जी जी जी जी,
1: जी
0: ओके,
1: आज ही तूफान वगैरह हो गया जहाँ पर।
0: अच्छा, कभी आंधी तूफान तो अभी गर्मी, भीषण गर्मी। ओके,
1: अभी तो गर्मी अभी पड़ रही है 10 दिन रोज से।
0: बापरे बापरे, जी जी जी जी, हाँ जी, तो खूब पानी पीजिए, अपने आप को गर्मी से बचाए रखिए।
1: ज्यादा बताते हैं पानी ज्यादा पिए, वो तो 24 महीने 12 महीने में तो।
0: जी जी जी जी, सही बात है,
1: समय हो गया, 2-3 महीनों से बातचीत हो रही है।
0: ओहो ऐसा, ओके ओके जी,
1: असल में कहा दूसरों को मौका भी मिलना जरूरी है।
0: हाँ जी, ये बात भी बहुत सही कही आपने हारून साहब, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। जी,
1: जी।
0: तो कहिए आज कौन सा फिल्म गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है माफिया का, सुना देना।
0: ओके,
1: कुमार सानू का आवाज में सुना देना।
0: ओके,
1: दिल ये पागल,
0: दिल ये पागल है। ओके,
1: मंगल के दिन आएगा ना, टाइम चेंज?
0: हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ, शाम को FM पे होगा 7:35 को, और मीडियम वेव पे 8 बजे, 2 बार बजेगा कल रात को। जी
1: अच्छा,
0: और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: ईटानगर में सब श्रोता सुनना है, सबके लिए है। पुरुषोत्तम कुमार हैं, गजरा रूदी हैं, रुकेत वर्मा हैं, भगवान सिंह परमा सिंह हैं, रुकेत वर्मा हैं, और जो श्रोता सुनना है सबके लिए,
0: सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो हारून जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ।
0: ओहो जी अमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप, सुनाइए।
1: सर
0: जी मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो।
1: जी मैं भी अच्छा ही हूँ, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं है, ज्यादा बारिश भी नहीं दे रहा है, ठंडा हो रहा है थोड़ा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी, हमारे यहाँ पे भी लगातार बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही प्यारा है। और आज खेत नहीं गए।
1: खेत में तो अभी नहीं गई है, थोड़ी
0: अच्छा
1: देर बाद में जाना पड़ेगा पत्थर में।
0: ओके ओके ओके जी जी जी,
1: पानी नहीं हो रहा है, बारिश होने से भी हमारे पत्थर में काम करने के लिए थोड़ा अजीब सा लग
0: ओहो
1: रहा है
0: ओके
1: पानी की
0: ओके।
1: वजह से।
0: अच्छा पानी तो जरूरी है खेती के लिए। हाँ जी हाँ जी, तो बारिश नहीं हुई अभी तक।
1: बारिश तो हो रही है लेकिन
0: हल्का
1: छोटी
0: फुल्का
1: छोटी
0: ना।
1: बारिश, हल्का सा बारिश आ रहा है, भारी बारिश
0: ओ
1: नहीं आ रहा है, इसलिए पानी नहीं हो रहा है पोखरी में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी, ओ तो बिना पानी के तो खेती करना मुश्किल ही होगा
1: सामने तो
0: जी।
1: इसे नोटी वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारा वहाँ
0: ओहो
1: पे फ्लॉप होने की भी चांस नहीं है ज्यादा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी ओके। अगर आपने सामने कोई नदी
1: सामने
0: होता
1: तो
0: तो।
1: जगह बहुत ही अच्छी है हमारा यहाँ पे, तो
0: अच्छा जी जी जी, लेकिन पानी की
1: बारिश
0: कमी है।
1: होते है तो खेती कर सकता है, जो बारिश नहीं होता है तो खेती कर नहीं सकता है, ज्यादा
0: ओके, मुश्किल होता है ना।
1: फसल नहीं मिलता है।
0: जी जी जी जी सही बात। तो हम आशा करते हैं जल्दी अच्छी बारिश हो ताकि आप खेती कर सकें। हाँ जी, तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं।
1: आज मैं मिट्टू डन फिल्म का कह दो एक बार सजना ये गाना को सुनना है।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोग के साथ सुनना चाहेंगे।
1: मेरे दोस्त है भाईकुन मुंडा, बिमल बसुमतारी, रमेश पात्र, रमेश प्रजापति, जगेंद्र रोंगपी, देवाशीष हजुरिका, हितेंद्र दास, मीनल अहमद, अविनाश तैली जी है, और अनुप कुमार जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती है, और रमेश प्रजापति, और शारदा प्रसाद है, और राकेश है, गोल्डी पूरन वर्मा है, रमेश तलर है, और योगेश चांगरी, गौतम राय बोले, और बहुत सारे दोस्तों को, और साथ में आपको भी, और नूरी मैडम को भी,
0: ओके।
1: और सभी अरुण एफएम और आकाशवाणी ईटानगर के सभी आर्टिस्ट के लिए
0: तो
1: मुझे
0: अमल जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद
1: बहुत
0: का
1: बहुत
0: गाना।
1: शुक्रिया सर।
0: जी जी नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते जवाहरलाल जी।
1: जी हाँ जी हाँ, मैं कचहर से बोल रहा हूँ जवाहरलाल वर्मा
0: जी।
1: इतना बिजी है सर। हेलो फरमाइश क्या बोलवा रहा आपको।
0: जी जी जी जी काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं ना हमसे।
1: जी हाँ जी हाँ जी, बहुत
0: जी
1: सारे श्रोताओं ने जुड़ते हैं
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: मैंने काफी समय पे ट्राई करते करते अभी लग गया
0: अच्छा
1: सर तो
0: अच्छा जी जी चलिए लग तो
1: बहुत
0: गया।
1: बहुत हाँ,
0: और
1: बहुत अच्छा
0: कहिए
1: लगता है।
0: आप कैसे हो।
1: ठीक हूँ सर, आप कैसी है सर।
0: जी मैं भी बहुत ही ठीक ठाक हूँ। मौसम भी बढ़िया है आपके वहाँ, बारिश।
1: सर जी हाँ, बारिश तो होता रहे है, 2-3 दिन से हल्का हल्का सा बारिश हो रहा है
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी
1: और
0: जी
1: दिन में तो बहुत धूप है सर, बहुत गर्मी है,
0: ओहो ओके ओके।
1: बहुत गर्मी है।
0: अच्छा तो काम ना हो तो बाहर ना निकले यही अच्छा रहेगा।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: जी
1: यही
0: हाँ जी
1: तो सही बात है सर।
0: जी जी जी घर पे बैठिए और रेडियो सुनिए। तो जवाहरलाल जी कहिए आज कौन
1: गीत
0: सा फिल्म का
1: गाते
0: गीत।
1: चल
0: जी कौन सा फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: गीत गाते चल 1970
0: गीत गाता चल।
1: महान गीतकार और सुरकार रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ वो सुर में साजे हुआ वो गाना सुना दीजिए। जसवंत सिंह के सर में, धरती मेरी माता पिता आसमान,
0: ओके बहुत ही अच्छा गीत।
1: वो फिल्म में वो अभिनेता सचिन और सारिका जी ने अभिनय किया है, वो गाना मुझे सुना दीजिए
0: जी जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों को
1: या
0: सुनाना
1: डेडिकेट तो
0: चाहेंगे।
1: करना चाहता हूँ सर पहले आपके
0: जी जी धन्यवाद।
1: और हेलो फॉर्मर सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए।
0: सभी को आप सुनाना चाहते हैं।
1: जी हाँ जी हाँ सर,
0: जी हाँ तो जवाहरलाल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: हाँ धन्यवाद सर।
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मुझे आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: क्या बात है। जी
1: सर,
0: जी हमें
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी सर।
0: जी। और कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: जी सर, बताना चाहूँगा काफी गर्मी है, 45-46 डिग्री के करीबन टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे।
0: ओहो जी जी जी जी
1: जी हाँ, मतलब घर से बाहर भी नहीं निकल सकते 10 बजे के बाद में।
0: जी जी जी जी
1: जी बस घर में रहे, कार्यक्रम सुने और मतलब ज्यादा
0: हाँ
1: से ज्यादा पानी
0: जी
1: पिए।
0: जी जी
1: सभी
0: जी
1: श्रोताओं को मैं यही कहूंगा, हमारे आसपास वाले श्रोताओं को।
0: जी जी जी बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, घर पे रहें और रेडियो सुने
1: जी,
0: और
1: अगर
0: खूब
1: जाना
0: पानी
1: जरूरी
0: पिए।
1: हो तो एक कैप पहने, मस्त दस्ताने ले जाए साथ में और मुंह पे मतलब मास्क लगाए
0: जी
1: और पानी की बोतल साथ में ले जाए और समय समय पर। जी सर हाँ,
0: हाँ जी
1: मैं
0: हाँ
1: बताना
0: जी
1: चाहूंगा,
0: जी
1: मोबाइल ऐप पे आपके कार्यक्रम सुनता हूँ ईटानगर के में और आकाशवाणी ईटानगर का नियमित श्रोता बन चुका हूँ।
0: जी
1: हमारे दोस्त है आकाशवाणी जो बताते रहते हैं कार्यक्रम के बारे में, लोकेंद्र वर्मा जी,
0: जी जी
1: उन्होंने
0: जी
1: मुझे काफी स्टेशन से जोड़ा है, उनका तहे दिल से शुक्रिया।
0: जी हम भी उनसे उन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे, काफी नए
1: जी
0: श्रोताओं को वो जोड़ते हैं हमसे। जी जी
1: जी बिल्कुल,
0: जी
1: उनके पास में सारी अपडेट आती रहती है ना, तो
0: जी हाँ
1: हमारा
0: जी
1: एक
0: हाँ जी
1: ग्रुप बना हुआ है हेलो फरमाइश रेडियो एक्टा ग्रुप के माध्यम से, तो वो मतलब समय समय पे अपडेट डाल देते थे कि अभी इस कार्यक्रम का मतलब समय हो चुका है, सुनने का भी
0: ओके
1: समय बताते हैं वो और
0: ओके,
1: रिकॉर्डिंग का भी समय बताते हैं।
0: क्या बात है क्या बात है। जी जी बहुत ही अच्छा
1: जी
0: काम कर रहे हैं लोकेंद्र वर्मा जी, तो उन्हें तो आप डेडिकेट करना ही चाहेंगे, तो कौन सा फिल्म का गीत आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी अनजाना फिल्म का गाना है कि जान चली जाए पिया नहीं जाए, ऐसे करके गाना है इसमें।
0: ओके हाँ जी
1: जी हाँ सर, ये गाना सुनना चाहूंगा और हमारे सभी ग्रुप के जितने भी मेंबर है ना सभी को डेडिकेट करना चाहूंगा, इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी जी
1: जी सर,
0: ओके
1: और ये खजाना आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा।
0: हाँ जी हाँ
1: और
0: जी
1: सर जी सर, मैं बताऊं आपको कि जब मैं कार्यक्रम सुनूंगा ना तो इसको रिकॉर्ड करके भी रखूंगा।
0: अच्छा क्या बात है। जी
1: जी
0: जी जी
1: सर
0: जी तो आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, तो प्रेम सिंह जी सुनते हैं आपके पसंद का गाना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हाँ, जय बजरंग रेडियो सोता संग बस स्टैंड बंडा वेले चले।

0: कि हमारे रहेंगे गजराज लोधी हैं, मांगीलाल चंदेल हैं, बसंतीलाल सुंदरकंद कटारे, ऋषिकेश तिवारी हैं, ये सब दोस्त हैं, ये सब नचाए।
1: ओके तो लक्ष्मण जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: ठीक है सर,
1: ओके नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: सर नमस्ते जी, मैं ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया।
0: जी सत्येंद्र कुमार जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए कैसे हो आप?
1: जी सर मैं बहुत बढ़िया हूँ और हमें उम्मीद है कि आकाशवाणी ईटानगर परिवार भी अच्छी तरीके से होगा।
0: जी जी जी, हम सभी बहुत ही बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत ही बढ़िया मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं हम लोग।
1: आपके यहाँ मौसम इस समय किस प्रकार का है? जैसे हम यहाँ इस समय भारी गर्मी का सामना कर रहे हैं।
0: जी हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है।
1: वो क्षेत्र ही कुछ ऐसा ही हो जाता है।
0: जी जी जी जी, हाँ हाँ, इलाका पहाड़ी इलाका है।
1: हमारे यहाँ बारिश के तो एक महीने तक कैसे भी आशा नहीं, हालांकि अभी बीच में हो गया है।
0: अच्छा जी जी,
1: लेकिन वो बेमौसम बरसात जिसको कहते हैं।
0: जी जी जी जी, ओके।
1: एक गाना में भी ये शब्द आया है, बेमौसम बरसात हो।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वही हुआ आपके साथ?
1: हाँ, तो अभी कुछ ऐसा ही इधर हुआ है।
0: ओके, तो कुछ महीना और रुकना पड़ेगा बारिश के लिए?
1: हाँ, बारिश के लिए अभी एक महीने का करीब करीब, जुलाई से।
0: अच्छा, बारिश होने के संभावना,
1: अभी विशाल बारिश कुछ लेट होने की उम्मीद है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
1: इस तरफ हमारे जो बुंदेलखंड में है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: लेट आने की संभावना है। आप क्या बोको बागरा साहब बोल रहे हैं क्या?
0: हाँ जी, मैं बोके बागरा बोल रहा हूँ।
1: वो मुझे लगा मुझे पहचानने में थोड़ी देर तो हुई।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जी जी। हो जाता है। तो सत्येंद्र जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज फिल्म इक्का राजा रानी का सुनवा दिया।
0: ओके, गाने के बोल।
1: मेरे सावरे सावरिया मुझ पे स्वतन को क्यों लाए।
0: ओहो हो, जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: अरे ये हमारा ग्रुप है, हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप, ये इसके सभी सदस्य सुन लेंगे। एक में ही सबको समेट लिया है, एक तो वो सीधा ग्रुप का ही नाम ले दिया, अलग
0: जी,
1: अलग
0: जी,
1: नाम
0: जी,
1: लो।
0: हाँ
1: एक
0: जी,
1: आका
0: हाँ जी,
1: छूट गया तो वो नाराज हो जाते हैं कि हमारा नाम नहीं
0: जी,
1: लिया,
0: जी जी जी बिल्कुल सही कहा।
1: तो इसलिए वो पूरा ग्रुप इन वन कर दिया।
0: ओके ओके, ग्रुप इन वन। जी जी जी जी, तो सत्येंद्र जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद के गाना। ओके नमस्कार।

0: हल्लो फरमाइश।
1: जी हाँ श्रोता मित्र, अभी आप आनंद ले रहे थे आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं जी हाँ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इस सफर में आपके साथ है आपके अपने रेडियो साथी नीलम।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, हमारे हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं हम दिल दे चुके फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे हम दिल दे चुके हैं फिल्म के गीतों का। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है और आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ही पलों में, जी हाँ, 8:30 पर आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: And with that, we came to the end of today's episode of Western Melodies here on Akashwani Itanagar. I'm your host, Coco. Thank you for spending this beautiful moment with us. I hope today's song brought back memories, emotions, and good energy. Until next time, stay safe, stay happy, and keep listening to good music. Bye-bye.
1: श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम का। जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जी हाँ, कार्यक्रम के तहत हम ऐसे गीत चुन के लाते हैं जो समय के साथ काफी पीछे छूट गए हैं। आइए फिर उन गीतों को एक बार फिर गुनगुनाएं और बीते हुए यादों को ताजा करें। रात यूं ही थम जाएगी, रुत ये हंसी मुस्कुराएगी, बंधी कली खिल जाएगी और शबनम शर्माएगी। प्यार के वो कैसे नगमे जो बन जाए

अफसाने जिन्हें सुन के। जी हाँ दोस्तों, दूर कर राही फिल्म से कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और सुलोचना पंडित की आवाजों में।

0: हो गया दिल से मिला ले दिल मेरा तुझको मेरे प्यार की कसम
1: जा जा जा जा बेवफा
0: सुन सुन सुन सुन जालिमा
1: अरे जा जा जा जा
0: अरे सुन सुन सुन सुन
1: जा जा जा जा
0: सुन सुन सुन सुन
2: श्रोता मित्रों आप सुन रहे थे आर पार फिल्म से गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत। जी हाँ श्रोता मित्रों आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। तो चलिए इसी के साथ ही आगे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बदतमीज फिल्म का ये गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, बदतमीज फिल्म से आप सुन रहे थे बेहद ही प्यारा गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आपको सुनवाने जा रहे हैं इसी फिल्म का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। जी हाँ, आप सुन रहे थे बदतमीज फिल्म के गाने और इस गीत को आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का पुनः स्वागत है। श्रोता मित्र, आगे आप सुन पाएंगे चांद और सूरज फिल्म के गाने। लीजिए, प्रस्तुत है सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे थे चांद और सूरज फिल्म के गाने। जी हाँ श्रोता मित्रों, इस गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले ने। और इस गीत के साथ ही अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के समापन पर आ पहुँचे हैं और आप सभी से अलविदा कहने का वक्त भी हो चला है। श्रोता मित्रों, उम्मीद है इस प्रसारण सभा के कार्यक्रम आप सभी को पसंद आए होंगे। इन कार्यक्रमों को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादिका गए रहते तथा तकनीकी अभियंता अमित कुमार सक्सेना। और हाँ श्रोता मित्रों, साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। जाने से पहले ये भी बता दें कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड के कार्यक्रमों पर, तो आप जुड़े रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे कल प्रातः 5:48 पर हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। फिलहाल मुझे यानी अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: matters. The Reserve Bank of India has kept the key interest rates unchanged for the second consecutive monetary policy review in the current financial year. Announcing the bi-monthly monetary policy today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain the repo rate at 5.25% while maintaining a neutral policy stance. The RBI has revised its GDP growth projection for the current financial year downward to 6.6% from the earlier estimate of 6.9%. The central bank has also raised its inflation forecast to 5.1% from 4.6%. Union Home Minister Amit Shah has said that the Smart Border project in its final execution stage, with a pilot rollout planned next year at 7 to 8 sensitive locations along borders, guided by the BSF and SSB. Addressing the Prahari Sammelan at Lankamura border outpost in Tripura today, Mr. Shah said the project will integrate advanced technology, Javans and local civil administration to create an impenetrable border management system. Mr. Shah asserted that government will not allow any demographic shifts along the porous border stretches of Tripura, West Bengal and Bihar through infiltration or border gaps. Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal arrived in New Delhi today on a three-day visit to India at the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Dr. Jaishankar will hold talks with his Nepalese counterpart tomorrow. In hockey, India defeated Pakistan 5-3 in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan, to set up a title clash against the hosts. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashvani se Vishw Darpan ke saath, main Aparna Singh. मुख्य समाचार. भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की योजना पर कड़ा विरोध जताया. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और वायु रक्षा प्रणाली देने की पेशकश की. आईएईए ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली आपूर्ति लाइन की मरम्मत के लिए यूक्रेन और रूस के बीच अस्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत की और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा. और अब समाचार विस्तार से. भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है. इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है. ये चुनाव 7 जून को होनी है. भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं. बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता समी दीन बलूच ने बलूच कवित्री हबीबा पीरजान के कथित जबरन लापता किए जाने की कड़ी निंदा की है. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बलूच महिलाओं को मनमाने ढंग से हिरासत में ले रही हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में समी बलूच ने कहा कि हबीबा पीरजान को इस वर्ष 25 मई को कराची में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लिया था. उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है. समी बलूच ने स्थिति को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने और मामले पर ध्यान देने की अपील की है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है. उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है. सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच के दौरान दुनिया की कुछ समाचार एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि रूस अभी भी भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है. भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है. इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल

0: स्थानीय प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही है।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
0: अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष अब तक 1076 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया है, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 3567 थी। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच प्रवासन और लोगों की आवाजाही को लेकर बातचीत जारी है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर सक्रिय रूप से इसका नेतृत्व कर रहा है। आज सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई बुनियादी ढांचा परियोजना की शुरुआत करने के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अकेले गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है, जो देश की हरित ऊर्जा हिस्सेदारी का एक महत्वपूर्ण 5वां हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने घोषणा की है कि उसने यूक्रेन और रूस के बीच अस्थायी स्थानीय युद्ध विराम पर बातचीत की है, ताकि यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बिजली आपूर्ति करने वाली एक महत्वपूर्ण लाइन की मरम्मत की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि क्षेत्र में व्यापक बारूदी सुरंग हटाने के अभियान के बाद दोनों पक्षों के टेक्नीशियन द्वारा अब 750 किलो वोल्ट की क्षतिग्रस्त निप्रोवस्का बिजली लाइन की मरम्मत शुरू किए जाने की संभावना है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने चक्रवात तूफान दितवा से हुए व्यापक नुकसान के बाद भारत सरकार के अनुदान से पुनर्निर्मित उत्तरी रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। ये पुनर्निर्माण कार्य भारत द्वारा श्रीलंका के राहत कार्यों के लिए दिए गए 45 करोड़ अमरीकी डॉलर के व्यापक पुनर्निर्माण पैकेज के अंतर्गत 50 लाख अमरीकी डॉलर के भारतीय अनुदान से किया गया। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मेगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज रोम डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई एथलीट बन गए। उन्होंने कल पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 92.62 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की। 23 वर्षीय पथिराज पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के ओलंपिक स्वर्ण

पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले शीर्ष एशियाई भाला फेंक खिलाड़ियों में शामिल हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद ने कहा है कि अमेरिका चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने की दिशा में प्रगति कर रहा है। अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर सदन की वेज एंड मीन्स समिति की सुनवाई के दौरान समिति के अध्यक्ष जेसन स्मिथ ने कहा कि अमेरिका चीन पर निर्भरता कम कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की योजना पर कड़ा विरोध जताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और वायु रक्षा प्रणाली देने की पेशकश की। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।